0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री

0: मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देश भर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में NDA के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी कटक महाप्रभु श्री श्री जगन्नाथंकर पवित्र घोषयात्रा अवसर रे शुणंतु अमर विशेष वंदना।
2: नीलकंदर निवासी प्रभु श्रीजगन्नाथ मुक्तिदायक ब्रह्मांड नायक जगत बंधु कृपा सिंधु पुणि भक्तर अति प्रिय कालिया शांत सुंदर तांकर रूप ताठू आहुरी सुंदर तांकर ठाणी सतरे तांकर रूप जेतिकी सुंदर महिमा भी सेतिकी महत्वपूर्ण पतित उद्धार करि से बोलांती पतित पावन पुणि भक्तर दुख दूर करि से दुख नाशन भक्त मनरे केते आशा से पतित उद्धारकारी दुख हारी कालिया ठाकुर को टिके देखिब नेत्र पवित्र करिब ता जीवनर सबु दुख दूर हेजिब हेले ता डोरी न लागिले ता पाखरे पहुँचिबा कौन संभव सेथिपाई ताकु टिके देखिबा को मन बळिबारु भक्त तारी डोरी लगाई देबा को आजि ता कालियार कृपा भिक्षा करुचि केते नेहुरा करी कहुची

बड़ी चतुराई से मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में कौशल्या तथा राम के प्रति ऐसे विष का बीज डाल दिया जिसके प्रभाव में सूर्यकुल के सुख समृद्धि हर्ष और उल्लास सबको एक बारगी सुखा डालने की क्षमता थी। सौत की ईर्ष्या की सैकड़ों उल्टी सीधी मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर मंथरा ने कैकेयी को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। कहती है, हे रानी, अपना मित्र या शत्रु तो पशु भी पहचान लेते हैं, परंतु तुम्हें तो अपने हित अहित की पहचान नहीं है। एक पखवाड़े से राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं और तुम्हें इसकी सूचना आज मुझसे मिली है। हे स्वामिनी, अब तुम्हारी स्थिति वही होगी जो दूध में पड़ी मक्खी की होती है। यदि पुत्र सहित राजा की चाकरी करोगी तब तो यहां रह पाओगी, अन्यथा तुम्हें भी दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। अपने अनिश्चित भविष्य की आशंका से रानी कैकेयी कांप जाती है। अब उन्हें ये भान होता है कि पिछले कई दिनों से उनकी दाहिनी आंख फड़कती रही है और रातों को बुरे बुरे सपने आते रहे हैं। वो मन में ठान लेती हैं कि मायके जाकर शेष जीवन बिता देंगी, किंतु जीते जी सौत की चाकरी नहीं करेंगी।

NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम 1330 अध्याय शुणीपरिवे संध्या पांचटा बजे 30 मिनिटे शुणीपरिवे कार्यक्रम जुबवाणी संध्या 6:10 शुणीबे ओडिया भक्ति गीत एवं देशात्मबोधक गीत शुणीपरिवे संध्या 6:15 ओडिया आलबम गीत शुणीपरिवे संध्या 6:21 संध्या 7:00 शुणीपरिवे ओडिया कथाचित्र गीत ओडियारे संवाद शुणीपरिवे संध्या 7:15 एवं जिल्ला हलचल शुणीपरिवे संध्या 7:25 आज एथिरे शुणीबे सुवर्णपुर जिल्ला संपर्क में प्रचार कर आकाशवाणी कटक केन्द्र संध्या 7:30 शुणीबे चासी भाई भोनी कार्यक्रम कृषि हलचल एथिरे आलोचनार विषय रही कृषि पई मृत्तिका स्वास्थ्यर उपयुक्त संरक्षण और परिचालना आलोचना करछंती मृत्तिका विज्ञान विभाग शिक्षा अनुसंधान कृषि महाविद्यालय भुवनेश्वर डॉक्टर अंतर्जमी मिश्रंक सह राति 8:00 शुणीपरिवे हिंदी कथा चित्र गीत राति 10:00 शुणीबे नाटक पुरुषोत्तम देव प्रचार कर आकाशवाणी कटक केन्द्र जगन्नाथ भजन शुणीपरिवे राति 10:56 शुणिले आज प्रचारित होगा कार्यक्रम संपर्क में सूचना आकाशवाणी पूरी परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद परे आमर स्वास्थ्य एवं ओडियारे संवाद प्रचार कर आकाशवाणी कटक केन्द्र।

0: आकाशवाणी कटक समय वर्तमान सकाळ 7:15 बजे 15 मिनिट हेबाको जाउछि हमर परवर्ती कार्यक्रम ओडिया रे संवाद
1: आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा हरियाणार जिंद रेल स्टेशन ठारु देशर प्रथम हाइड्रोजन चालित रेल चलाचल आज शुभारंभ करिबे प्रधानमंत्री पंजाबर जलंधरु ओडिशा समेत देशर 74 पुनः विकसित अमृत रेल स्टेशन करिबे उद्घाटन प्रकाश पाइला एनडीए परिचालित नीट यूजी पुनः प्रवेशिका परीक्षा फल 11 लक्षर ऊर्ध छात्र छात्री उत्तीर्ण ईरान उपरे अमेरिकार आक्रमण जोरदार एवं 3 मैच विशिष्ट क्रिकेट सीरीज्र गतकाल अनुष्ठित द्वितीय मैच रे भारत को 4 विकेट्रे परास्त कला इंग्लैंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा चंडीगढ़ एवं पंजाब गस्तरे जिबे हरियाणार जिंद रेल स्टेशन ठारे जिंद एवं सोनीपत मध्यरे देशर प्रथम हाइड्रोजन रेल चलाचल प्रधानमंत्री शुभारंभ करिबे जिंद्र एकलव्य स्टेडियम ठारे आयोजित होबाकु थिबा एक समारोह रे प्राय 14,700 कोटी टंकार विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर श्री मोदी लोकार्पण ओ शिलान्यास करिबे हरियाणार जिंद रेल स्टेशन ठारे शुभारंभ होबाकु थिबा एही ट्रेन हाइड्रोजन इंधन सेल प्रजुक्ति विद्या द्वारा चालित होबो हाइड्रोजन को विद्युत रे रूपांतरित करी ट्रेन को गतिशील करिबो स्वदेशी ज्ञान कौशल निर्मित एही ट्रेन उन्नत रेल इंजीनियरिंग क्षेत्र रे देशरे वृद्धि पाउथिबा क्षमता को दर्शाउछि भारतर एही प्रथम हाइड्रोजन चालित ट्रेन रो शुभारंभ रेलवाई क्षेत्र रे स्वच्छ एवं स्थायी गतिशीलता दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण माइलखुंट सब्यस्त हेबो एही हाइड्रोजन ट्रेन ने 10टी कोच रहिछि जेउथिरे 2,600 यात्री यात्रा करि परिबे एथिरे 3,200 हॉर्स पावर विशिष्ट इंजिन व्यवहार करा जायछि जर्मनी एवं चीन ने चलुथिबा हाइड्रोजन ट्रेन ने मात्र 2-3 कोच व्यवहार करा जाउछि एई ट्रेन ने बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सामिल करा जायछि हाइड्रोजन निर्गमन उत्ताप धुआं एवं अग्निशिखा बाहरिबा संपर्क रे संधान करिबार क्षमता रहिछि एई ट्रेन आरंभ हेबा द्वारा भारत जर्मनी जापान चीन एवं युक्तराष्ट्र अमेरिका भली स्वच्छ रेल परिवहन पर हाइड्रोजन व्यवहार करुथिबा देश मानक मध्यरे सामिल हेबो अपराह्नरे श्री मोदी जिंद्रु चंडीगढ़ यात्रा करिबे एवं सेठारे स्वास्थ्य सेवा शिक्षा एवं सड़क भित्तिभूमि प्रकल्प सह जड़ित 4,700 कोटी टंकार अधिक मूल्यर विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन करिबे प्रधानमंत्री सेठारे एक जनसमावेश को उद्बोधन देवार कार्यक्रम रही परे श्री मोदी पंजाबर जलंधर गस्त कर 5,470 कोटी अधिक टंकार विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करिबार कार्यक्रम रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशार 7 समेत देशर 74 पुनः विकसित अमृत रेल स्टेशन उद्घाटन करिबे पंजाबर जलंधर गस्त कर सेठारु प्रधानमंत्री एही रेल स्टेशन गुड़िकर उद्घाटन करिबार कार्यक्रम रही एही 74 अमृत स्टेशन 20 राज्य में रही है विश्वर सर्वबृहत स्टेशन पुनः विकास कार्यक्रम विरासत भी विकास भी स्लोगान दे एही स्टेशन गुड़िकर शुभारंभ करा सह स्थानीय संस्कृति ऐतिह्य और स्थापत्य को प्रतिफलित करिबो ओडिशार 7 प्रमुख स्टेशन गुड़िक बलांगीर बरपाली पारलाखेमुंडी तालचेर केसींगा बारीपदा और विमलगढ़

प्रशिक्षण और कर्मशाला अनुष्ठित हेबो प्रतियोगी मानंकु आंतरजातिक स्तर रो प्रशिक्षण प्रदान करिबा एवं एही खेल रे जड़ित कौशल संबंध रे अवगत करैबे लागि कर्मशाला प्रशिक्षण आयोजन हेबो। हॉकी इंडिया अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की कहिसंती एही कार्यक्रम फल रे देश रे हॉकी मूलदुआ आउ ऋषुदृढ़ हेबो। फुटबॉल ले भारत रो 17 वर्ष रु कम महिला दल को एएफसी 17 वर्ष रु कम महिला एशिया कप 2027 क्वालिफायर रो ग्रुप ई रे मलेशिया सीरिया एवं इराक सह रखा जाई छी। भारत द्वितीय थर लागि प्रतियोगिता रे क्वालिफायर जितिबा लागि उद्यम करिवो।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
2: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद एसएस नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम तलवाड़ा मुकेरिया नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल

0: लैप और सोशल मीडिया हैंडल एक्स एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा
4: नवाचार अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी इसमें नवाचार करने वाले युवा शैक्षणिक संस्थान स्टार्टअप निवेशक उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों पॉलिटेक्निक संस्थानों औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर आकाशवाणी समाचार दिल्ली
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल दंत चिकित्सा आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी गुजरात आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे इस दौरान वे सीमा सुरक्षा शासन कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया करेंगे

0: केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगंडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से करगिंडम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को एएफसी अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है नीट यूजी का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताज़ा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है ओरमूज पर जहाजों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, एक श्रद्धालु की मौत, लोकसत्ते की सुर्खी है। पत्र लिखता है खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़। राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मानसून ब्रेक। दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है दो नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश, 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है कोची स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्ते ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती, दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात

कृष फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। नासिर फराज ने इसे लिखा था और राजेश रोशन का संगीत था। बंटी और बबली फिल्म का गीत आपको अब सुनवा रहे हैं सोनू निगम महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ें। गुलजार के बोल हैं शंकर एहसान लॉय की तर्ज।

0: सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में बंटी और बबली फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे. गीतकार थे गुलजार और संगीतकार शंकर एहसान लॉय.
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है.
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो.
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते. अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली.

सुनिधि चौहान और कुणाल गांजावाला की आवाज़ों में फिर हेरा फेरी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। समीर ने इसे लिखा था, हिमेश रेशमिया ने इस गीत की तर्ज बनाई थी। और इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: सुनिले विविधवादी मुंबई केंद्रर कार्यक्रम आकाशवाणी पुरी आपण माने सुनछंती एफएम माध्यमरे 103.4 मेगाहर्स जोगे आकाशवाणी पुरी केंद्रर कार्यक्रम बर्तमान आसंत सुनिमा फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी पुरी उपस्थापना करछंती संतोष कुमार लिंगा प्रयोजना दिलीप कुमार नायक
1: बड़दाण्डरे महाप्रभु भक्तिर महामिलन

0: ଏ ଗୀତଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ସହିତ। ହ୍ୟାଲୋ ଆକାଶବାଣୀ ପୁରୀ
1: मान्यवर सादर नमस्कार।
0: नमस्ते जी, आपका परिचय दीजिए।
1: मैं आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। महोदय आप कैसे हैं?
0: हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी हमारा यहाँ पुरी जगन्नाथ धाम पे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा की उत्सव मनाया जा रहा है, तो वहाँ पे मथुरा में कोई जगन्नाथ मंदिर हो या ऐसा कुछ है जहाँ पर कुछ ऐसे रथ यात्रा की कोई पावन अवसर हो रहा हो?
1: जी जी, सर्वप्रथम मैं आपको भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की बहुत बहुत

0: हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। ये पावन पर्व भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सभी के लिए कल्याणकारी और मंगलमय हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ आपको, आकाशवाणी पुरी को और समस्त श्रोताओं को।
1: धन्यवाद।
0: मान्यवर, बताना चाहता हूँ कि हमारे मथुरा वृंदावन में भी एक वृंदावन में जो स्थान है वहाँ पर एक बहुत बड़ा भव्य जगन्नाथ भगवान का मंदिर बना हुआ है।
1: अच्छा।
0: और जैसा आपके जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है, उसी प्रकार हमारे वृंदावन में बहुत ही धूमधाम उत्साह पूर्वक और हर्षोल्लास के साथ में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है और उसमें लाखों लाख श्रद्धालु भक्त लोग शामिल होते हैं और बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है।
1: चलिए, तो ये जगत के नाथ हैं इसीलिए उनका नाम जगन्नाथ है, इसमें कोई जात पात ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, वो इसीलिए उतर आते हैं अपने मंदिर से, भक्तों के बीच में आ जाते हैं, तो इसीलिए ये इसका महत्व तो बहुत बढ़ जाता है क्योंकि वो ब्रह्म और परम ब्रह्म एक हो जाते हैं, एक दूसरे में लीन हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा सा एक मैसेज देता है कि आप अगर मिलजुल के रहें तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं है।
0: जी जी बिल्कुल, ये तो भगवान जगन्नाथ का संदेश ही है कि सब लोग मिलजुल के रहें और ऊंच नीच भेदभाव कोई यहाँ मायने नहीं रखता है। प्रभु को महाप्रभु है, महाजगन्नाथ है, महाप्रसाद है, वहाँ पर सब कुछ महा है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई कुछ छोटा है ना।
1: हाँ जी,
0: तो
1: हाँ
0: बहुत ही भक्त लोग बहुत ही मान सम्मान आदर के साथ श्रद्धा के साथ भाव के साथ में भगवान जगन्नाथ को महाप्रभु को प्रसाद ग्रहण करते हैं, इस तरह से बहुत ही आनंद की अनुभूति करते हैं।
1: चलिए चलिए, तो महाप्रभु की करुणा सब पे बरसे यही कामना करते हैं ये विशेष दिवस में। तो इसी अवसर पे कौन सा आपका फरमाइश का गाना सुनना चाहेंगे बताइए।
0: मानवर, इसी अवसर पर मैंने एक उड़ीसा आकाशवाणी से बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत सुना है, राजा इंद्रधूम का सपना।
1: अच्छा।
0: प्यारा सा खूबसूरत गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आकाशवाणी पूरी से हम समस्त ब्रज रेडियो श्रोता मित्रों के लिए प्रसारित करें।
1: चलिए चलिए, तो फोन करने के लिए मथुरा से बहुत बहुत धन्यवाद। तो जगन्नाथ जी की कृपा अब हम सब पे बरसे, तो रहते हैं, जय जगन्नाथ।
0: जय जगन्नाथ, बहुत बहुत हृदय से बधाई, शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करते हुए सादर नमस्कार।

ढोलक की थाप दूर दराज के महलों तक सुनाई दी। जब उसे खबर मिली तो वो भी पहुंचा। खिड़कियों दरवाजों से झांक झांक कर उसकी नजर पकड़ने की कोशिश करता रहा। मेहंदी सजी दुल्हन तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। एक सहेली दुल्हन के लिए चाय की प्याली लेकर आई। उसने तो मांगी नहीं थी। सहेली की आंख ने झपक कर कहा, पी लो, कप में पैगाम भी है। कप की तह में उसने अंगूठी रखकर भेज दी थी। अंगूठी होंठों से पी ली और उंगली में पहन ली। सहेली की मेहंदी लगी हथेली पर उसने लिख कर भेज दिया, उसी सनसेट पर मिलना जो पुल पर मिला था। लेकिन संदेशा पहुंचा नहीं, वो जा चुका था। पल भर में सब बदल गया और कुछ भी नहीं बदला। जो बदला था वो तो गुजर गया।

ये आवाज है भूपेंद्र सिंह की। आप सुन रहे हैं गुलजार साहब की ये रचना। संगीत दिया है विशाल भारद्वाज ने। इससे पहले आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में एक भजन।

0: भूपेंद्र सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे गुलजार साहब का ये कलाम।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा।

0: मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

किशोरी अमोनकर और साथियों की आवाजों में अभी आपने संत मीराबाई का ये भक्ति पद सुना। कार्यक्रम में आप सुनिए अभिजीत की आवाज में एक गैर फिल्मी गीत। रचनाकार हैं सुब्रत और संगीतकार सप्तऋषि।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अनूप जलोटा के संगीत निर्देशन में हम आपको हरीश चंद्र का लिखा ये भक्ति पद सुनवा रहे हैं। आवाज पामेला सिंह की है।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
2: जी।
1: जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, और आइए आप सुनते हैं मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह की आवाजों में ये गजल।

0: सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए ये शायर जिसका नाम भूपेन हजारिका है, कितनी आसानी से अवाम के दिलों की आहट सुन लेता है। ये रात जो लोगों के दर्द की रात है, अवाम के गम की रात है, जब उसके सीने में गूंजती है तो वो तलाश करने लगता है यह आवाज़ कहाँ से आ रही है, इनकलाब किस रास्ते से आ रहा है और दर्द किस रास्ते से आगे बढ़ रहा है। वो कान लगाए सुन रहा है और वक्त से पूछ रहा है ये किसकी सदा है।
6: भूपेन हजारिका की आवाज़ में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलजार साहब की ये रचना।

0: देवी पलुस्कर की आवाज में अभी आपने संत मीराबाई का ये भक्ति पद सुना। जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और अब आज का रंग तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया हाइड्रोजन से चलने वाली इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत में ही डिजाइन की गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है
1: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी जापान चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ दो या तीन डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार
0: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जींद के एक क्लब स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ

0: ختم کریں گے پردھان منتری آج پنجاب کے جالندھر سے 5,470 کروڑ روپے سے ادھک لاغت والی ریل اور سڑک بنیادی ڈھانچہ پریوجناؤں کا ادھگھاٹن اور شلانیاس کریں گے پردھان منتری آج ویڈیو کانفرنسنگ کے مادھیم سے دیش بھر کے 75 پنروکست امرت ریلوے اسٹیشنوں کا ادھگھاٹن بھی کریں گے ان میں کیرلم کے 6 ریلوے اسٹیشن بھی شامل ہیں ان اسٹیشنوں کے پنروکاس سے راجیہ میں ریل بنیادی ڈھانچے اور یاتری سویدھاؤں میں اللیکھنیہ سدھار ہوگا گرہ منتری امت شاہ آج رات 3 دن کے دورے پر پشچم بنگال پہنچیں گے شری شاہ کل راج کے جمع گاچھ کے سیما چوکی استھت سیما سرکشا بل بی ایس ایف کی 18th بٹالین کا دورہ کریں گے جہاں وہ پرہری سمیلن کو سمبودھت کریں گے وکشاروپن میں بھاگ لیں گے تتھا کئی وکاس پریوجناؤں کا ادھگھاٹن اور شلانیاس کریں گے श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तरकन्या में कई उच्चस्तरीय बैठकें करेंगे इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी शाम को वे कोलकाता के लिए रवाना होंगे भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है इससे पहले भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक हुर्मुस जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए इस संबंध में जहाज मालिकों जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ
1: ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कुछ खास गीत। जी हाँ, आज जानी मानी अभिनेत्री जरीना वहाब का जन्मदिन है, तो विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और आज इस कार्यक्रम में

सावन को आने दो, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों की आवाजों में। गीत को लिखा था गौहर कानपुरी ने और धुन बनाई थी राजकमल ने। और ये आवाज है रूना लैला की, फिल्म का नाम घरोंदा, नक्श लायलपुरी की रचना और जयदेव की धुन।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जा।

0: पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक मिल
1: एक और आ
0: गया एक और आ गया।
2: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और भी कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: कार्यक्रम का अगला गीत यशुदास की आवाज में फिल्म चितचोर से हमने लिया है। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन हैं।

यशोदास की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म चितचोर का ये गीत। और लीजिए अब सुनिए एन दत्ता का संगीत, पंडित भरत व्यास की बोल, आवाज सुमन कल्याणपुर की, और फिल्म का नाम गोपाल कृष्ण।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
2: जी।
1: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।

0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम में अब सुनिए गुलजार साहब की लिखी रचना राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में। इसे आवाज दी है आशा भोंसले ने और ये फिल्म है सितारा।

अभिनेत्री जरीना वहाब की फिल्मों से कुछ गीत आइए सुनते हैं। फिल्म नैया का गीत, इसे आवाज दी है हेमलता ने। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन हैं।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: फिल्म दहलीज का दो गाना सुनिए, स्वर आशा भोंसले और महेंद्र कपूर के हैं, गीतकार हैं हसन कमाल और संगीत रवि का है।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत हमने नक्श लायलपुरी का लिखा हुआ चुना है। इसे संगीत में डाला है जयदेव ने, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
0: जी।
1: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक और एक 11। जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुनने वाले हैं। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और आशा भोंसले। शब्दकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं सुलक्षणा पंडित और साथियों का गाया हुआ फिल्म जज्बात का गीत, शब्द महेंद्र देहलवी के और धुन राजकमल की।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने मशहूर अभिनेत्री जरीना वहाब की फिल्मों से कुछ गीत सुने थे।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की इबारत पढ़कर आप सभी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, है ना? क्योंकि आज की इबारत बिल्कुल साफ इशारा कर रही है कि आज सुरीले सफर में होने क्या वाला है ना?

हमारे श्रोताओं ने यानी हमारे दोस्तों ने पूरे के पूरे आज गीत लिख दिए हैं जो हमारे गीत इस कार्यक्रम में बजने वाले हैं, और जिन श्रोताओं ने इस इबारत को जब और गहराई से पढ़ा तो उन्होंने इस बात को भी समझा कि उद्घोषक महोदया आज क्या कुछ नया लेकर आई हैं। जी हाँ, ये सभी बातें हम इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि फेसबुक पेज पर जब आप अपनी टिप्पणियां हमें लिख रहे हैं, हम उन्हें पढ़ रहे हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तब पता चल रहा है कि हमारे श्रोता आज बहुत खुश हैं और इस इबारत में पूरे के पूरे गीत जो हमने आज चुने हैं आपके लिए लगभग आपके वही गीत हमें भी नजर आ रहे हैं। और हाँ, जिन श्रोताओं ने, जैसा कि हमने कहा कि जिन श्रोताओं ने इस इबारत को और गहराई से पढ़ा और ये समझा कि उद्घोषक महोदया आज क्या कुछ नया लेकर आई हैं, तो वो समझ गए हैं कि आज हम लेकर आए हैं कुछ शीर्षक गीत। जी हाँ, शीर्षक गीत, जैसे फिल्म आवारा का गाना है आवारा हूँ, ऐसे ही कुछ गाने आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो शीर्षक गीत हैं उस फिल्म का। और दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि ये शीर्षक गीत अक्सर फिल्म के मुख्य संदेश या केंद्रीय भाव पर आधारित होते हैं और कोई भी गीतकार गीतों के जरिए सीधे दर्शकों के दिलों से जुड़ना चाहते हैं और इन फिल्मों की आत्मा उनके गीत में नजर आ जाती है जिन्हें शीर्षक गीत के माध्यम से और ज्यादा बताया जाता है। मतलब फिल्मों के शुरुआती और सुनहरे दौर में शीर्षक गीत लिखने की जो परंपरा थी वो बहुत सारे गीतकारों ने शुरू की, जैसे कि शैलेंद्र साहब, मजरू सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, इन्होंने मुख्य रूप से फिल्म के प्रचार और थीम को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए इसे अपनाया और शीर्षक गीत हमारे लिए रचा। तो चलिए, आज इस सुरीले सफर में आप सभी हमारे साथ हैं, हमें उम्मीद है, क्योंकि आज का ये सुरीला सफर बहुत साफ सुथरा है, पथरीला नहीं है, कांटों से भरा नहीं है, फूल ही फूल है, और हमें अपना मार्ग, अपना पथ पता है कि आज सुरीला सफर ये सफर कहाँ तक का है। तो चलिए, निकल पड़िए इस सुरीले सफर पर।

0: प्यार का सागर, जी हां, ये था फिल्म का नाम जिसका दो गाना अभी आपने मुकेश और आशा भोंसले की आवाजों में सुना। गीतकार प्रेम धवन थे और संगीतकार थे रवि। और हाँ, हम देखिए ना, इतनी खुशी में आज की इबारत आपको बताना ही भूल गए, क्योंकि जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है कि आज की इबारत क्या है। लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से जुड़ गए हैं उसी इबारत को पढ़ने के बाद उन्होंने समझा कि आज का ये जो सुरीला सफ़र है उसमें क्या होने वाला है। हाँ, हम अपने नए श्रोताओं से ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर आप विविध भारती परिवार की जो टीम है, सदस्य हैं, उससे जुड़ सकते हैं, यानी विविध भारती परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, अपने विचार हम तक लिख सकते हैं। तो आज की इबारत है कि प्यार का सागर जब किसी की आंखों में उमड़ता है तो दिल किसी गहरे एहसास से लबालब हो जाता है, आंखों ही आंखों में बातें होने लगती हैं। यकीनन जब प्यार किसी से होता है तो प्यार का मौसम प्यार ही प्यार बरसाता है। आशिक दिल कह उठता है, तुमसे अच्छा कौन है, कोई नहीं, कोई भी तो नहीं। सुनो, दिल ने फिर याद किया है तुम्हें, हाँ अब वो दिन दूर नहीं, बस समझो लग गई है महबूब की मेहंदी तुम्हारे हाथों में, यादों की बारात लेकर हम आ रहे हैं तुम्हारे राजकुमार। और हमारे श्रोताओं ने भी हमारी इबारत पढ़ने के बाद अपने विचार हम तक लिखे हैं। आप लिखते हैं कि आज गद्यांश पूरी तरह प्यार का सागर लेकर आया है। प्यार का एहसास एक ऐसी दिव्य और भावपूर्ण अनुभूति है जो जीवन को असीम लालित्य, सुंदरता और सार्थकता प्रदान करती है। ये केवल एक भावना नहीं बल्कि आत्मा का एक स्पंदन है जो दो हृदयों को एक अदृश्य डोर से बांध देता है। प्यार मन को कोमलता, धैर्य और गहरी शांति प्रदान करता है, जिससे जीवन की आपाधापी भी एक मधुर संगीत से प्रतीत होती है। इसके प्रभाव से ढलते सूरज की किरणें, बारिश की बूंदें और हवा का हर झोंका एक काव्यात्मक रूप ले सकता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार का एहसास सपनों का राजकुमार, हाथों में मेहंदी, कुछ उमड़ते जज्बात और उस पल सिर्फ बस प्यार ही प्यार। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत यानी एक छोटी सी सुखांत लघु कथा लग रही है। एक अनुरागिनी किशोरी है, उसके दिल में समाया प्यार का सागर आंखों में उतर आता है। उस मुग्धा की आंखें बोल उठती हैं, धीरे धीरे प्यार की रुत हमारे बाहर ले आती हैं। दिल बेकरार होता है, प्रीतम के बिना कुछ भी प्यारा नहीं लगता। और फिर वो दिन भी आता है जब यादों की पालकी में बैठ कर अपने राजकुमार के नाम से लगी मेहंदी निहारते हुए उस प्रेमिका युवती का इंतजार संपन्न हो जाता है। इतनी सहज सुंदर प्यार भरे स्वप्निल अनुभूति के लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद इतनी प्यारी इबारत लिखने के लिए। एक श्रोता लिखते हैं कि चाहत की नदियां जब दिल के साहिल से टकराती हैं तो रूह में एक अजीब सी हलचल मच जाती है। खामोश निगाहें भी तब धड़कनों का हाल बयां करने लगती हैं। सचमुच जब जिंदगी में किसी खास की आमद होती है तो फिजाओं में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की खुशबू महकने लगती है। तब बेकरार दिल बस यही पुकारता है, ओ मेरे दिल के चैन तुम्हारे सिवाय इस जहां में मेरा कोई नहीं, कोई भी तो नहीं। बहुत सुंदर आपने अपनी बात लिखी है, अपनी तहरीर लिखी है। एक श्रोता लिखते हैं कि तेरे नैनों की गहराई में उतरा हूं, जब से लगता है ये दिल बन गया है, जैसे कोई प्यार का सागर बहती है जहां सदा अश्कों और जज्बातों की लहरें, मैं गा रहा हूं बस यही धुन, तू ही प्यार का सागर है, जब से छाई है तुम्हारे हुस्न की ये बहार, बदल सा गया है हर मौसम, बन गया है प्यार का मौसम मेरे राजकुमार, सज गई है हाथों में तुम्हारे चाहत की लकीर, जैसे सजी हो मेरे महबूब की मेहंदी, देखा दुनिया की इस भीड़ में गुम है मेरी दुनिया, क्योंकि मेरी आंखों में बसा है सिर्फ प्यार ही प्यार, खोया रहता है मैं अब तो बस तुम्हारे ख्यालों में, और दिल गुनगुनाता है चांद की चमक हुए तारों की छांव, इन हसीन नजारों में तुमसे अच्छा कौन है, तुम्हारी इस दिलकश अदा पर फिदा है सारा जहां, बस एक ही धड़कन गूंजे तुमसे अच्छा कौन है। अरे वाह, हम भी आपसे ये कहेंगे कि हमारे श्रोताओं से अच्छा कौन है। तो चलिए बढ़ते ही थोड़ा सा आगे और सुनते हैं आज का ये दूसरा शीर्षक गीत। आवाज़ें आशा भोंसले और किशोर कुमार की है। फिल्म का नाम है आंखों ही आंखों में। गीतकार हसरत जयपुरी हैं और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।
1: आंखों आंखों में आंखों

जी, तो ये गाना था फिल्म आंखों आंखों में का। आवाजें आशा भोंसले और किशोर कुमार की थी। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। हमारे श्रोता लिखते हैं कि लालायत दिलों को लुभाती प्रेम रस से लबरेज इबारत है, हुस्नो इश्क को प्रीत की रीत का राहत दिखाती है। प्रेम रोग से पीड़ित दिलों को राहत प्रदान करते हुए प्रेयसी के हाथों की मेहंदी सजाकर अंततो गत्वा सुखद समापन करती है। यादों में ही सही बारात का जिक्र प्रेमी युगल को लाभान्वित करेगी। प्रेमारंभ से प्रेम बंधन तक का सफर तय करने का सुखद अनुभूति प्राप्त करने की हसरत लिए हम श्रोतागण भी आतुरता से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, आप इंतजार करते हैं हमें पता है, और इस सुरीले सफर में हमारे साथ रहते हैं अंत तक, हमें ये भी पता है। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर आज की इबारत हमारे सभी श्रोताओं ने भेजी है। किसे पढ़ूं किसे नहीं समझ होता है, कई बार ऐसा लगता है क्या पढ़े और क्या ना पढ़ पाए। अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार का सागर लहरा रहा है, जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। आपने अच्छा उन गीतों को आपने लिख दिया है और कहा है कि आंखों आंखों में बातें होती हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं और महबूब के हाथों में मेहंदी सजती है, यादों की बारात लिए सपनों का राजकुमार आता है। आज की इबारत एक पूरी

प्रेम कहानी है जिसे हम सभी श्रोता आज की प्रस्तुता हमारे नाम से लिखा है आपने के मुखारविंद से सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। और आप इस वक्त मुझे सुन भी रहे हैं, हमें सुन रहे हैं विविध भारती के जरिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में सब गाने लिख दिए गए हैं, इसलिए आज का सुरीला सफर बहुत ही आसान हो गया है। हमने आपसे क्या कहा था कि चलिए इस आसान सफर में हमारे साथ चलिए, आज डरिए मत, कहीं कुछ नहीं है, कांटे पथरीले पथ कुछ नहीं है, सब कुछ आसान है, सरल है। तो आप तैयार हो गए हैं ना हमारे साथ चलने के लिए? कुछ श्रोता तो हमारे साथ चल भी दिए। देखिए आप लिख भी रहे हैं कि जब प्रेम सच्चा होता है तो आंखें ही दिल की आवाज़ बन जाती हैं, बिना कुछ कहे अनगिनत बातें हो जाती हैं, मेहंदी का रंग, यादों की बारात और दिल की पुकार, सब मिलकर यही कहते हैं कि सच्चा प्रेम एक दिन अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचता है। यही इस इबारत का सबसे कोमल और दिल को छू लेने वाला एहसास है। नींद कहाँ आती है जब लग जाती है महबूब की मेहंदी हाथों में। और अब हम आपसे दो सवाल करने वाले हैं जिसका आपको हमेशा इंतजार रहता है ना? हमारा पहला सवाल आपसे बिल्कुल सीधा साधा कि आपको कौन से या कौन सा एक शीर्षक गीत का नाम लिखकर भेजिए। कौन सा शीर्षक गीत है जो आपको बेहद पसंद है? और हमारा दूसरा सवाल कि कहते हैं कि हिंदी फिल्मों में सबसे पहला शीर्षक गीत वर्ष 1949 यानी 1949 में आई एक फिल्म में लिखा गया था, तो आपको बताना है कि वो फिल्म कौन सी थी और इसके गीतकार कौन थे, क्योंकि वो आगे चलकर महान गीतकार कहलाए। और सबसे बड़ी बात कि 1949 में आई इस टाइटल ट्रैक की सफलता इतनी बड़ी थी दोस्तों कि इसके बाद से ही टाइटल सॉन्ग्स का चलन बहुत तेज़ी से, मतलब बहुत तेजी के साथ चलना शुरू हो गया था। तो आपको बताना है कि 1949 में आई इस फिल्म का नाम क्या है और उसके महान गीतकार कौन थे। तो अगला गीत जब प्यार किसी से होता है फिल्म का, आवाज हमने लता मंगेशकर की चुनी है, गीतकार हसरत जयपुरी हैं और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये शीर्षक गीत सुना। फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज पहली बार मंदाकिनी जी की इबारत भी लंबी है। लंबी इबारत हो तो मैं कार्यक्रम नहीं सुनता, पर आज अवश्य सुनूंगा, क्योंकि मंदाकिनी जी की अविरल कलकल बहती नदी जैसी आवाज की वजह से, क्या बात है, जैसे अरे लता मंगेशकर जी का हर गाना सुना जा सकता है उनकी आवाज की वजह से। चाहे गीत के बोल और संगीत कैसा भी हो, तब कोई भी गाना बुरा नहीं लगता। उसी प्रकार लंबी इबारत को भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन केवल आज तक। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। लेकिन एक बात बताइए, इबारत तो बहुत छोटी सी थी। हम तो कोशिश यही करते हैं कि जितनी कम शब्दों में अपनी बात कही जाए वो ज़्यादा बेहतर, और हमारी कोशिश ये भी रहती है कि हमारी इबारत थोड़ा सरल हो, ताकि हमारे श्रोता जो हैं परेशान नहीं हो और इस सुरीले सफ़र में हमारे साथ अंत तक बने रहें, है ना। एक श्रोता ने लिखा भी है इसके बारे में, आगे मैं उनके विचार पढ़ने वाली हूँ, बड़ा ही मस्त लिखा है उन्होंने। वहीं एक श्रोता अभी लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम भीगतावासा प्यारा सा है, नमस्कार आपको, हमारा आज की इबारत तो पूरी प्यार से भरी है, आपके साथ दोपहर 1 बजे मज़ा दोगुना हो जाएगा। और आपने आज की टेक्स्ट से निकलने वाले संभावित शब्दों पर गाने भी लिखे हैं, जो लगभग मुझे लगता है सारे ही सही हैं ऐसा लग रहा है। एक आध गाना शायद नहीं हो सकता, बाकी आप खुद चेक कीजिएगा कि हमारी जो गानों की आज महफिल में हमने चुने हैं गीत, वो आपके गीतों से मेल खा रहे हैं या नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में प्रेम की गहराई का वर्णन खूबसूरती से किया है, फिल्मों के नाम को जोड़कर सुंदर गानों से इस एहसास को और मजबूत किया गया है। आपने भी फिल्मों के बहुत सारे नाम लिखे हैं, लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा तू प्यार का सागर है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि ये गाना फिल्म सीमा का है ना। और हमने आज चुना है शीर्षक गीतों का कार्यक्रम, यानी प्यार का सागर जब हमने गीत बजाया था तो उसकी फिल्म का नाम भी था प्यार का सागर, है ना, समझ आए ना आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में प्यार का सागर उमड़ने वाला है, वो भी किसी की आंखों में, और फिर आंखों ही आंखों में बात होगी, तो प्यार की बरसात होना बहुत ही लाजमी है। दिल आशिकाना होकर किसी को याद करेगा तो महबूब की मेहंदी सुंदर हाथों में लग जाती है, क्योंकि यादों की बारात लेकर राजकुमार जी आने वाले हैं। प्यार का सागर देखा है किसी के, ये गीत तो जरूर बजना चाहिए, बज भी गया है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में फिल्मों के नाम और गीतों की पंक्तियां हैं, ये केवल हमारी भावनाओं का आईना ही नहीं बल्कि प्रेम की सच्ची भाषा है। इनमें प्रेम की मिठास, बिछड़ने का दर्द, मिलने की खुशी, यादों की गर्माहट है। जब दिल में प्यार का सागर हो, हाथों में महबूब की मेहंदी का रंग हो, साथ में यादों की बारात हो, तब जिंदगी किसी खूबसूरत फिल्म से कम नहीं होती। कितना सुंदर लिखा है आपने, और मुझे लग रहा है कि जब आज प्रेम उमड़कर आया है इस सफर में, तो लोगों के दिल से प्रेम की बौछारें होने लगी हैं। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रेम हमारी जरूरत है, ये प्यार है ना, ये स्नेह, ये इश्क, अलग अलग तरीके से किया गया जो प्यार है, अलग अलग रिश्तों में किया गया प्यार है, लेकिन मूल भाव उसका है प्यार, जिसकी हर इंसान को, हर प्राणी को बहुत ज़रूरत है। आप देखिए आपने कितने सुंदर विचार लिख डाले हैं आज प्यार पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्यार का मौसम फिल्म का ये शीर्षक गीत सुनते हैं, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। इससे पहले हम अपने सवालों को एक बार फिर से दोहरा देते हैं। हमने आपसे पूछा था छोटा सा सवाल कि आपको कौन सा शीर्षक गीत पसंद है, किसी एक गीत का जिक्र आपको करना है। और हमारा दूसरा सवाल ये था कि कहते हैं कि हिंदी फिल्मों में सबसे पहला शीर्षक गीत 1949 में आई एक फिल्म से लिखा गया था, आपको बताना है ये फिल्म जो 1949 में आई थी वो कौन सी थी, इसके गीतकार जो कि महान गीतकार कहलाए।

वो कौन थे, क्योंकि उनकी भी ये पहली ही फिल्म थी। इतना हमने आपको क्लू दे दिया है, हिंट दे दिया है। और हाँ, 1949 में आई इस टाइटल जो टाइटल ट्रैक की सफलता हुई वो इतनी बड़ी थी दोस्तों कि इसके बाद से ही टाइटल सॉन्ग्स का चलन तेजी के साथ शुरू हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।

जी हाँ, ये है फिल्म का नाम प्यार का मौसम। आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी हैं, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

लाइन में चार फिल्मों के नाम और फिल्मी गीत लिखे गए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो इबारत में ही कई फिल्मों के नाम है, अब देखना है कि गीत कौन से सुनने को मिलते हैं। तो आपने देख लिया, सुन लिया ना कि आज हमने कौन से गीत चुने हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत पसंद आई, कम से कम फिल्मों के नाम तो क्लियर है, दिमाग को मेहनत कम और सुकून ज्यादा मिलेगा, ज्यादा उलझी हुई इबारत देने की कोई जरूरत भी नहीं होती है। ये गीतों के आनंद देने का लेने का कार्यक्रम है, कोई एमए हिंदी का पेपर नहीं जहां अनसीन पैसेज हल कराया जा रहा। अरे आपने इतना गंभीरता से ले लिया इस बात को, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे कार्यक्रमों में जब भी कोई इबारत लिखी जाती है तो गानों के आधार पर ही लिखी जाती है। कई बार आपको लगता होगा कि इबारत बहुत कठिन है और इसमें कौन से गाने बच जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब आपको हिंट दी जाती है कुछ इबारतों में कि आज क्या बजने वाला है ना। तो इसे आप हिंदी का पेपर, एमए हिंदी का पेपर नहीं समझें। ये वाकई एक दिलचस्प प्रोग्राम है जहां सिर्फ हमें उस सुरीले सफर का आनंद लेना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत से हमने जो शब्द चुना वो है प्यार। प्यार के बिना तो पूरी इबारत मानो सुनी। प्यार शब्द ने इस इबारत को बड़ा ही प्यारा बना दिया है। प्यार की सबसे खूबसूरत बात यही है कि जितना इसे बांटा जाए उतना ये दिलों में बढ़ता है। कुछ एहसास शब्दों में नहीं समाते हुए बस मुस्कान बनकर, चेहरों पर अपनत्व बनकर रिश्तों में उतर जाते हैं। कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, बस अपनापन मांगते हैं। दो मीठे शब्द, एक सच्ची मुस्कान और दिल से निकला एहसास। बहुत गहरी बात आपने लिखी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब दिल में प्यार का सागर उमड़ता है तो आंखों में ही अनकही बातें होने लगती हैं। फिर जीवन में प्यार का मौसम दस्तक देता है और मन बरबस कह उठता है, तुमसे अच्छा कौन है। बिछड़ने और मिलने के बीच भी दिल ने फिर याद किया कि मधुर धुनें दिल में गूंजती रहती हैं। जब रिश्तों की डोर और गहरी होती है तो हाथों में मेहंदी सजती है और खुशियों की यादों की बारात साथ लेकर सपनों का राजकुमार जीवन में प्रवेश करता है। यही तो प्यार की सबसे खूबसूरत कहानी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर तरीके से आपने इबारत पेश की है। एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार कोई बड़ा इजहार नहीं बल्कि छोटी छोटी बरवाहों का नाम है। किसी की मुस्कान की वजह बन जाना, उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेना, हर हाल में उसका साथ निभाने की चाह, यही तो सच्चे प्यार की सबसे खूबसूरत पहचान। एक प्यारी सी बात, सच्चा प्यार फूलों की खुशबू की तरह होता है, उसे जोर से पकड़कर नहीं रखा जा सकता, लेकिन उसका एहसास लंबे समय तक दिल में महकता रहता है। सच मानिए, आपका ये प्यार भी हमारे दिल में महकता है। और देखिए, इसलिए तो हम अब जो गीत लेकर आए हैं उसमें सिर्फ प्यार होगा। हाँ, फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार। आवाज मोहम्मद रफी की, शब्दकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

हमारे श्रोता का लिखना है कि आज कुछ इस प्रकार के गीत बजने वाले हैं जो कि दिल की गहराइयों को छू जाएंगे, जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी गहराई से इस बात को समझा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारत की पहली सवा

जी हाँ, हमारे श्रोताओं ने हमारे सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया है। एक श्रोता लिखते हैं कि शायद आपका जो सवाल है कि हिंदी फिल्मों में सबसे पहला शीर्षक गीत किस फिल्म के लिए लिखा गया, शायद फिल्म बरसात है और बरसात में हमसे मिले तुम सजन ये गीत हो सकता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मी दुनिया का सबसे पहला शीर्षक गीत फिल्म बरसात से था और इसके गीतकार थे शैलेंद्र। जी हाँ, और वहीं श्रोताओं ने और भी अपने सवालों के जवाब में लिखा है कि संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और सलमान खान की फिल्म साजन जब रिलीज होने वाली थी उसके थोड़े दिन पहले ही साजन फिल्म का टाइटल सॉन्ग लिखा गया और फिल्माया गया और फिल्म में डाला गया था, यानी ये गीत इन्हें बेहद पसंद है फिल्म साजन का। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा पसंदीदा शीर्षक गाना है फिल्म नजराना का, जिसे मोहम्मद रफी ने गाया, गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार रवि हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ही प्यारा गीत चुना है। एक प्यासा मुझे मैखाना दिए जाता है, जाते जाते भी ये नजराना दिए जाता है। बहुत सुंदर गीत है रफी साहब की आवाज में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शायद 1949 में आई फिल्म बरसात पहली फिल्म थी जिसमें शैलेंद्र जी ने बरसात में जब मिले हमसे तुम सनम तुमने ये गाना लिखा था। बिल्कुल सही जवाब है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सर्वाधिक शीर्षक गीत लिखने का रिकॉर्ड भी शैलेंद्र के नाम पर ही है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपके सवालों के जवाब हैं बूंद जो बन गई मोती, ये शीर्षक गीत सटीक इसलिए बहुत प्यारा लगता है, यानी बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म का जो गीत है वो आपको पसंद है शीर्षक गीत। वहीं आप लिखते हैं कि दूसरा बरसात में हमसे मिले तुम सजन 1949 का पहला शीर्षक गीत है और गीतकार थे शैलेंद्र। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 1949 में सबसे पहली फिल्म बरसात में शैलेंद्र जी ने बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम इस गीत की रचना की थी, जिसे शंकर जयकिशन ने संगीतबद्ध किया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत ही सरल और प्यारी है। एक श्रोता ने लिखा है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात शीर्षक गीत मुझे पसंद है, पर इसके अलावा भी पसंदीदा गीतों की लिस्ट बहुत लंबी है, हम आपके हैं कौन ये गाना भी हमें बहुत पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि 1949 की प्रथम टाइटल संगीत राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म बरसात में मिले हमसे तुम सजन ये गीतकार शैलेंद्र की रचना है जो सबसे पहली मानी गई है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा पसंदीदा शीर्षक गीत है दिल मेरा एक आस का पंछी, बहुत सुंदर गीत है ये। एक श्रोता लिखते हैं कि आपने मेरा मनपसंद गीत जब प्यार किसी से होता है बजा ही दिया है, ये गीत मुझे बहुत पसंद है। और एक श्रोता को दीवानों अरे दीवानों मुझे पहचानो मैं

0: हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, डॉन यानी डॉन फिल्म का गीत इन्हें बेहद पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि अखियों की झरोखों से आश्चर्य की बात है कि जिनकी आंखों की ज्योति बचपन से बुझी हुई थी, ऐसे महान गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन ने इसकी रचना की। ये गाना टॉप गाना था और इन्हें बहुत पसंद है ये गाना। और एक श्रोता को यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, जो हमारी लिस्ट में शामिल है, ये गाना बेहद पसंद है। और एक श्रोता को सफर फिल्म का गीत है जिंदगी का सफर, ये कैसा सफर कोई समझा नहीं, बहुत पसंद आता है। वहीं श्रोताओं को बहुत सारे गीत पसंद आए हैं, किसी को महबूब की मेहंदी फिल्म का टाइटल गीत बहुत पसंद है और किसी श्रोता को दिल एक मंदिर का टाइटल गीत पसंद है। वहीं श्रोता ने लिखा है कि आपके सवालों का उत्तर हमने दे दिया है, फिल्म बरसात और सवाल के उत्तर यानी शैलेंद्र। अरे हमने कोई प्रश्न पत्र थोड़ी रखा, ये तो हमारे कार्यक्रम के सवाल हैं जो हम सभी पूछते हैं अलग अलग तरीके से। कभी पूछा जाता है कि इस फिल्म का नायक कौन है, कभी पूछा जाता है नायिका कौन है, इस फिल्म में क्या था, आपने इस फिल्म को क्या देखा। तो हमारा सवाल भी इसी तरह से होता है कि आपकी पसंद का कोई शीर्षक गीत हो तो बताइए, या हमारी फिल्मी दुनिया में पहला शीर्षक गीत कब लिखा गया। तो इस तरह से ये सवाल जवाब ही इस कार्यक्रम को, इस सफ़र को अच्छा बनाते हैं, ऐसा हम मानते हैं और यकीनन आप भी मानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म तुमसे अच्छा कौन है का शीर्षक गीत, रचनाकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।
1: कभी हमने नहीं

सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा, देखो तुमसे अच्छा।

और जान हमें पर दोगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे

प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आए।

दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन।

0: Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rayalaseema and Telangana. Similar weather conditions are also expected at places over parts of northeast India, Andaman and Nicobar Islands, Bihar and Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. Meanwhile, heat wave conditions are likely to persist today over Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. The Met Department said that Andhra Pradesh, Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal are expected to experience a hot and humid day today. With Priya, this is Anuja Kumar for Akashwani News, Delhi.
1: In badminton, two-time Olympic medalist PV Sindhu has advanced to the semi-finals of the Japan Open 2026. Sindhu progressed after Japan's former world champion Nozomi Okuhara withdrew from their women's singles quarterfinal, giving the Indian shuttler a walkover. World number 10 Sindhu will now face China's world number 4 Chen Yufei in the semi-finals tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi flags off India's first hydrogen train in Jind, Haryana. Also lays foundation stone and dedicates various development projects worth over 14,000 crore rupees. DGMA directs ship owners to avoid deploying Indian seafarers undertaking voyages through Strait of Hormuz. European Union expresses serious concern over human rights situation in Pakistan, asks Islamabad to comply with international commitments to access trade benefits. IMD forecasts heavy rainfall over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Odisha today. And in badminton, Indian ace shuttler PV Sindhu enters semi-finals of Japan Open in Tokyo. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है
3: दो नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है

0: इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
0: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन

0: ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्र संकल्प का परिणाम है।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
1: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
3: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरु मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
4: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाज के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित

0: संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषयों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। चार दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जानोवस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से दो दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित GSP ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित ये प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर

मिजोरम और त्रिपुरा उत्तराखंड विदर्भ पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई भगवान बलभद्र देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को हॉर्मुज़ जलडमरू

0: गिरजा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को हॉर्मुस जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपण माने कार्यक्रम सुनचंती आकाशवाणी कटक केंद्ररु कार्यक्रम आम केंद्ररु प्रचारित होउची 308.6 मीटर तथा 972 किलोहर्ट्ज जोगे। आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद सुनि परिबे एही विज्ञापन परे।
2: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
3: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
2: आबाल वृद्ध वनिता समस्तंक पाई
3: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
2: केवल आकाशवाणी

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। श्रोताओं, इससे पहले आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गर्लफ्रेंड का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीत दिया था हेमंत कुमार ने। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

फिल्म का नाम है चांद मेरे आजा, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गीतकार आई एस कपूर हैं और संगीत चित्रगुप्त का है।

0: ये आवाज़ थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था चांद मेरे आजा। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। कार्यक्रम की अगली पेशकश इकबाल कुरैशी का संगीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म बिंदिया।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
1: जी।
3: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, रोशन का संगीत, प्रेम धवन की रचना, आवाज आशा भोंसले की, और फिल्म का नाम वल्लाह क्या बात है।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में फिल्म वल्लाह क्या बात है का ये गीत। और इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। जब हो अपनों का साथ तो मजबूत रहते हैं हाथ। जीवन की हर कठिन राह आसान लगने लगती है जब परिवार, मित्र और शुभ चिंतकों का साथ मिलता है। अपने केवल सुख के साथी नहीं होते, बल्कि कठिन समय में हमारा सबसे बड़ा संबल बनते हैं। उनका विश्वास, स्नेह और प्रोत्साहन हमें हर चुनौती का सामना करने का साहस देता है। जब मन निराश होता है, तब अपनों का एक भरोसेमंद हाथ हमें फिर से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही अपनापन रिश्तों को मजबूत बनाता है और जीवन में आत्मविश्वास का संचार करता है। इसलिए हमें अपने रिश्तों को प्रेम, सम्मान और विश्वास से सजोकर रखना चाहिए, क्योंकि अपनों का साथ ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी पूंजी है। चलिए देखें आज कौन से शहर से कौन सी हमारी सखी हमसे अपनी बातें करने वाली है। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर। हेलो सहेली।
1: हाँ जी, हेलो सहेली से बोल रहे हैं। मैं मनीतू बोल रही हूँ, जोधपुर से मैडम।
0: अच्छा, जोधपुर से बोल रही हैं, यानी कि राजस्थान से, है ना?
1: हाँ जी मैडम जी।
0: आपने बताया जोधपुर से रहती हैं, तो वहाँ पे क्या बहुत ही प्रसिद्ध चीज है, पहले तो ये बताइए हमें।
1: मैम, जोधपुर का तो मिर्ची बड़ा बहुत फेमस है।
0: मिर्ची बड़ा यानी बहुत अच्छी चीज, मुझे बहुत पसंद है।
1: और मैडम, बारिश के मौसम में आप खाओगे ना जब वहाँ पे खड़े खड़े, तो आप सोचोगे एक नहीं मैं चार खा लूं हमारे।

0: तो होता है, ये तो होता है। तो और ये तो चलिए खाने की चीज हो गई, वहाँ पे देखने लायक कौन सी चीज है?
1: मैम आप आइए मंडोर उद्यान देखिए, यहाँ का हमारे अच्छा पैलेस देखिए, उम्मेद भवन जिसको बोलते हैं।
0: अच्छा हाँ, उम्मेद भवन बहुत सुना है इसके बारे में।
1: बहुत से सेलिब्रिटीज की यहाँ पे शादियाँ ऑर्गेनाइज होती है।
0: तब तो आपके जोधपुर में खूब चहल पहल होती रहती होगी सेलिब्रिटीज की, तो अच्छा लगता होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारा नया एयरपोर्ट बनवाया गया है, रिनोवेशन हुआ है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। तो यानी आने वाली ऐसी जगह है जिसको देखना चाहिए जाके जरूर, है ना?
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल। और बताइए आपके घर में कौन कौन है?
1: घर में मैम मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, भाई है, भाभी है और मेरे दो भतीजियां हैं।
0: अरे वाह, तब तो भतीजियों के साथ खूब मस्ती चलती होगी, है ना?
1: बिल्कुल, उनका नाम ले
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल लीजिए।
1: एक बड़ी वाली है हर्षिता और छोटी वाली है पुलकिता।
0: अरे
1: पुलकिता का आज 7th मंथ का बर्थडे है।
0: अरे वाह, बहुत बहुत बधाइयाँ छोटी सी पुलकिता को, बहुत प्यारा नाम है, बहुत प्यारा नाम है। हर्षिता का भी और पुलकिता का भी, बहुत
1: दादा
0: प्यारा
1: ने नाम रखे हैं, हर्षिता नाम रखा था।
0: हाँ जी,
1: तब सेकेंड हुई है
0: अच्छा
1: तो बोले
0: अच्छा
1: पुलकिता रखेंगे इसका।
0: वही मतलब वही है, हर्ष उत्तर पुलकित हो ना। अच्छा, बहुत अच्छा नाम रखा है। और बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है, ये बताइए मुझे, आपके शौक क्या है?
1: मैं तो मैं घर का काम करती हूँ।
0: घर के काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन कुछ एक शौक होता है ना कि हम ये करें, इसमें हमें बहुत मन लगता है करने में, वो कौन सा काम है? वो
1: मैम मैं
0: डांस भी हो
1: हॉस्पिटल में
0: सकता है।
1: जॉब करती हूँ,
0: अच्छा, आप जॉब
1: सरकारी
0: करती हैं?
1: नौकर,
0: अरे क्या बात है, आप सरकारी नौकरी में,
1: नर्सिंग ऑफिसर हूँ मैं।
0: बहुत बहुत बढ़िया बात है। तो सरकारी नौकरी में भी हमारे कुछ अपने जो शौक होते हैं, जैसे कोई डांस किसी को पसंद होता है, किसी को गाना गाना पसंद होता है, किसी मतलब अलग अलग चीज़ें होती है, किसी को खेल पसंद होता है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, तो आपको क्या पसंद है?
1: मैम गाना तो मेरे को देखो इतना आता नहीं है, मैं रेडियो जरूर सुनती हूँ, वो साथ साथ वैसे गा लेते हैं पर वो वाली सिंगिंग नहीं,
0: अच्छा
1: लेकिन डांस का है तो वो शौक होता है, कभी कभी कर लेते हैं घर पे।
0: जब थक के आते हैं आप, है ना, जॉब से।
1: बिल्कुल
0: ये अच्छी चीज है, ये इस तरीके की जो चीजें होती है ना, वो हमें थोड़ा तरोताजा कर देती हैं थोड़ी देर के लिए, है
1: बिल्कुल,
0: ना?
1: थोड़ा
0: हम जो
1: माइंड फ्रेश करते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि थक के आते हैं वहां पे, जो जॉब की परेशानियां होती हैं, वो सब चीजों से हम जब जूझ के आते हैं ना, तो एक कुछ थोड़े से जो पल होते हैं ना, वो हमें ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल हम उसमें अपने मन का काम करें, है ना?
1: बिल्कुल मैडम जी।
0: तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: बारिश का मौसम है, मॉनसून सीजन है तो मेघा रे मेघा रे।
0: अरे वाह, क्या गाना सुनाया आपने, बहुत बढ़िया गाना है। तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं।
1: मैं केकता शेख बोल रही हूँ, गुजरात सूरत से बात कर रही हूँ मैं।
0: अच्छा, सूरत से बोल रही हैं आप।
1: जी
0: तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है। पहले तो सूरत के बारे में बताइए कि वहाँ पे क्या ऐसी चीज़ है जो हम देखने आ सकते हैं वहाँ आपके पास।
1: सूरत में कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं,
0: अरे
1: ड्रेस
0: वाह,
1: बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं।
0: अच्छा, यहाँ वहाँ के कपड़े मशहूर हैं बहुत ज़्यादा, है ना।
1: वहाँ के कपड़े बहुत मशहूर है, सब
0: अच्छा,
1: दूर दूर से हमारे एरिया में कपड़े खरीदने आते हैं।
0: अरे क्या बात बताई आपने, तो बहुत अच्छी चीज़ हमें पता चली है।
1: वो जो सलमा मैडम बेचते हैं ना, नए नए आए, उनकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है।
0: बहुत अच्छी
1: उनकी,
0: बात है।
1: फिर नेहा जी की, फिर पूजा जी की, फिर आपकी, ममता दीदी की, इन सबकी आवाज बहुत अच्छी लगती है मुझे। बस सब तक पहुंचा देगा।
0: बिल्कुल, आप पहुंच गई सब तक आपकी आवाज। तो आप ये बताइए कि आपको खाने में क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा।
1: बेटा मैं तो खाने में बिरयानी है, इसी चीजें खा लेती हूँ। बिरयानी, दाल पुलाव, खिचड़ा। खिचड़ा हमारे में बहुत बनता है।
0: अच्छा, तो चलिए और बताइए आपके घर में कौन कौन है।
1: मेरे घर में तो मैं हूँ, मेरी बहन है, मेरी मम्मी है, मेरा अब्बू है,
0: अरे वाह, तो सब लोग साथ में रहते हैं।
1: मेरी अजय शादी नहीं है, मेरी
0: हाँ,
1: दीदी की हो गई है।
0: अच्छा, आपको कौन सा गीत सुनना है।
1: हेलो सहेली में मैं वो गाना पसंद करती हूँ, बॉडी गार्ड का, तेरी
0: अच्छा, आपको बॉडी गार्ड का गाना
1: मेरी
0: सुनना
1: कहानी है मुश्किल।
0: है। अच्छा ठीक है, तो आपके पसंद का हम ये गीत सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आप पहले तो अपना नाम और कौन से शहर से बोल रही हैं ये बताइए।
1: आरती जी, आप तो हमारे ही बेटी का नाम भी आरती ही है।
0: अच्छा।
1: और वो आपका प्रोग्राम बहुत ही सुनती रहती है।
0: तो अच्छा लगता है।
1: और मैं बहुत अच्छा लगता है, 4 बजे तक सुनती रहती है और बोलती है मेरा नाम आया से गाना आया,
0: तो
1: बहुत मजा आता है उसको, इसके लिए मुझे बोलती है कॉल लगा।
0: अच्छा, तो कितनी बड़ी है आपकी बेटी?
1: मेरी बेटी मंदबुद्धि की है ना, इसके लिए वो चल नहीं पाती।
0: अच्छा,
1: थोड़ी मंदबुद्धि की, अभी 30 साल की हुई, अभी अभी इसकी बर्थडे हुई गई।
0: अरे वाह, तो उसको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और बताइए अब आपको मतलब क्या करना अच्छा लगता है अपनी बेटी के साथ? अब जब समय बिताती हैं तो किस तरीके से दिनचर्या रहती है?
1: मेरा उसको तो क्या है कि नक जो है ना वो रंगोना, शायद भी उखड़ जाए ना तो नक पॉलिश रंगवा लेती। चूड़िया तो 40-50 चूड़िया पहनती है।
0: अच्छा, तो
1: और
0: अच्छा लगता है उसे, तैयार होना अच्छा लगता है?
1: हाँ, उसको तैयार होना, कपड़ा 2 टाइम नहाना, खाना सब
0: अरे वाह,
1: जो मांगे वो देना,
0: बहुत बहुत अच्छी
1: उसकी
0: बात
1: ही
0: है।
1: शरारत में हमारे पूरा दिन निकल जाता
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। अपने अपने आप से प्यार करना है ना, अपने आप से प्यार करना सबसे पहले ज़रूरी होता है। और बहुत अच्छी चीज़ है, वो
1: क्या
0: सजती हैं संवरती है, अपने आप को अच्छा महसूस करती है, बहुत ज़रूरी है ये।
1: क्या है कि मैम, मेरा एक लड़का है बड़ा, और वो अभी शादी हुई, लड़की हुई, वो दूर रहता है। और अभी अभी एक मेरी लड़की की शादी हुई प्रियंका,
0: अच्छा,
1: आजवा रोड पे,
0: अच्छा, बहुत बहुत
1: उससे
0: आपको
1: छोटी
0: बधाइयाँ।
1: थी।
0: और आपकी मतलब बेटी को ये तैयार होना अच्छा लगता है, उसे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, कुछ ऐसी बनाना या कुछ इस तरीके की चीजें करना?
1: नहीं, ये सब नहीं, उसको तो क्या है कि वो गाना रेडिया वो सब
0: अच्छा,
1: बहुत पहले से सुनती रहती है। वो सलमान खान बहुत अच्छा लगता
0: हाँ
1: है, तो तेरे
0: अच्छा,
1: नाम का गीत सुनती है। वो
0: अरे वाह,
1: रोती है ना तो तेरे नाम का गीत सुना देते ना तो चुप हो जाती।
0: अच्छा, यानी उसे संगीत पसंद है। संगीत पता है आपको, एक बहुत अच्छी थेरेपी भी है।
1: हाँ, और आपका जो प्रोग्राम आता है ना वो सुनते हैं, उसमें से कुछ सीखना मिलता है, कोई खाना बनाना सीख लेते नए, कुछ बातें अच्छी सुनते तो किसी को बताते तो कोई खुश हो जाती।
0: बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत, ये समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि आप तक हम पहुंच पाए, आपको अच्छा लगा जो हमारा प्रयास है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। अब बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं जो आरती को पसंद है?

0: आरती को पसंद है, तुमसे अच्छा कौन है?
1: अच्छा, तुमसे अच्छा कौन
0: है? भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात।
1: अच्छा, तो चलिए आपकी पसंद का ये, यानी कि आरती की पसंद का ये गीत सुनाते हैं आपको, आंखें भरी भरी।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: तो आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी, मैं बोल रही हूँ कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से बोल रही हूँ।
0: अरे वाह,
1: सकीना है मेरा नाम, सकीना जी।
0: अच्छा सकीना जी बोल रही हैं और बारामूला
1: जी
0: कश्मीर से बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए अब
1: मैं
0: अपने बारे में थोड़ा सा, आप क्या करती हैं और आपके घर में कौन कौन है?
1: जी मैं घर में काम कर रही हूँ, पश्मीना का काम कर रही हूँ।
0: अरे वाह, पश्मीना का बहुत मशहूर है कश्मीर का पश्मीना एकदम नाम
1: जी
0: जुड़ा हुआ है
1: मैम,
0: कश्मीर के साथ में ना, पश्मीना का।
1: जी जी जी मैम
0: जी तो आपके घर में कौन कौन है?
1: जी, मेरे घर में मेरी फैमिली है, मेरे 3 बेटे हैं, तो एक बेटा है, 3 बेटियां हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए बच्चे छोटे हैं आपके कि बड़े?
1: नहीं, अभी छोटे हैं
0: छोटे हैं, तो यानी आपको पूरा टाइम उनके साथ में लगना पड़ता होगा, है ना
1: जी मैम।
0: आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपके बच्चे स्कूल गए होते हैं, मतलब आप जब अकेली होती हैं, आप कुछ कर नहीं रही होती हैं, तो आप क्या करती हैं अपने खाली समय में जब कोई काम सब निपट जाता है घर का?
1: जब खाली में रहती हूँ ना, बस ये रेडियो सुनती हूँ और अपना काम करती हूँ। और क्या, ये पश्मीना से ज्यादा हम रखते हैं ना, हम घर का काम खत्म करके बस यही
0: हाँ
1: करते हैं।
0: नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लगता होगा। अच्छा आप इसे पश्मीना का क्या मतलब शॉल बनाती हैं कि कोई
1: जी
0: ऊनी
1: मैम,
0: कपड़े?
1: शाल बनाते हैं।
0: शॉल बनाती हैं, बहुत ज़्यादा
1: जी
0: प्रसिद्ध है ये पश्मीना का शॉल तो, और वहाँ तो खूब अच्छे अच्छे तरीके के मिलते होंगे। अच्छा पश्मीना के बहुत किस्में होती हैं कि एक ही मतलब
1: जी मैम,
0: होता है?
1: बहुत कस्में होते हैं पश्मीना की।
0: अच्छा, तो आप सब तरह का बना लेती हैं?
1: जी, दो
0: अच्छा
1: तीन
0: अच्छा
1: कस्म के बनाते
0: अच्छा
1: हैं।
0: तो ये आप मतलब अपने घर से ही उसको सेल करती हैं या फिर आप कहीं और देती हैं कि इसको?
1: नहीं, हम किसी और के जरिए ये काम करते हैं।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप ये अपने अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं जो, है ना,
1: जी
0: क्योंकि
1: मैम,
0: बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ काम आता है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए ना, उसको आप अपने जैसे

0: कि हम अपने आप को थोड़ा सा और अच्छा कर सकें, है ना, थोड़ी सी मदद
1: जी
0: कर
1: जी
0: सकें।
1: जी
0: तो बहुत अच्छी चीज़ है आप जो कर रही हैं, घर में आप रह के इस तरीके से अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं। तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनना है?
1: जी मैं दिल वाले फिल्म है ना, उस का कोई भी गीत मैं सुनना चाहती हूँ।
0: दिल वाले फिल्म का कोई भी गीत सुनवा दें आपको, है ना।
1: जी जी मैम,
0: चलिए आपसे बात
1: थैंक
0: करके बहुत अच्छा लगा हमें, तो सुनाते हैं आपको
1: यू
0: आपके
1: मैम।
0: पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते। आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: हम रेखा मुखर्जी, वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद छाटवी से बोल रहे हैं।
0: तो बंगाल में सबसे ज्यादा देखने लायक क्या चीज है जो हम वहां पर आकर देख सकते हैं?
1: यहाँ पर बहुत कुछ मिल सकते हैं जी।
0: जी बताइए।
1: यहाँ पर नवाब पैलेस है,
0: हाँ
1: रसगुल्ला भी है, यहाँ का मुर्शिदाबाद
0: हाँ
1: सिल्क भी विख्यात है,
0: अच्छा।
1: फेमस है। यहाँ का आम भी फेमस है, फेमस
0: अरे हाँ, मुर्शिदाबाद का आम और सिल्क।
1: है।
0: बहुत बहुत, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और ये बताइए कि आपको क्या करना चाहते, आप हाउसवाइफ हैं या आप जॉब करती हैं?
1: हाँ हाँ जी, हम हाउस वाइफ है। हम लोग जो रेडियो में जो सुबह सकाल होता है ना,
0: हाँ
1: उसी
0: हाँ
1: में हम लोग मैसेज भेजते हैं। जब
0: अच्छा।
1: हम लोग को लाइव फोन में जब नहीं मिलता है
0: हाँ
1: तो हम लोग मैसेज भेजते हैं, स्टोरी पोएम लिख के भेजते हैं।
0: अरे वाह, आप लिखती भी हैं, आपको लिखने का शौक
1: हाँ,
0: है?
1: लिखती भी है। इस बार
0: अच्छा
1: भी हम भेजे,
0: अच्छा अच्छा
1: घर में मेरा पेड़ पौधे लगाए लगी हुई है,
0: हाँ अरे
1: और
0: वाह।
1: मेरा घर में बहुत सारी चीजें है जो पेड़ ओढ़ है फूल का, उसमें रात को रहते हैं उन लोग को हम दाना देते हैं।
0: बहुत अच्छी बात
1: तीन
0: है।
1: टाइम सबको दाना देते हैं
0: अच्छा,
1: हम।
0: तो आप इस चीज़ को बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, आप लिखते रहिए, अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखिए, पोयम लिखिए,
1: हाँ
0: कविताएं
1: हाँ
0: लिखिए,
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना? और बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: संजोग फिल्म का जू जू जू, जसोदा का नंदलाला, ब्रिज की उजाला है।
0: ठीक है, तो सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं आरती श्रीवास्तव। जरा ध्यान से सुनिए, ये फोन आपके संदेशों को हम तक पहुँचाने के लिए मीठी सी धुन सुना रहा है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए पहले अपना नाम और फिर अपने शहर का।
1: आओ सुंदर शहर बनाएं, डगर डगर पर वृक्ष लगाएं।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या शुरुआत करी है आपने, बहुत अच्छी बात कही है, एक मैसेज दिया आपने ना।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: इंदौर से बोल रही हैं आप, हसीना मंसूरी? हाँ
1: जी जी,
0: बहुत अच्छा लगा। बताइए कि आपको क्या पसंद है, मुझे लग रहा है ना आपको कई सारी चीजें पसंद होंगी करनी, है ना। सबसे पहले तो आपको बातें करनी पसंद होंगी, जहाँ तक मुझे लगता है।
1: जी, बातें बहुत अच्छे करते मैडम, और गाना भी सुनने का बहुत शौक है। रेडियो चलता रहता दिन भर, मतलब कम से कम 2002 से तो हम रेडियो रेगुलर सुन रहे, कभी मिस नहीं करते मैडम।
0: अच्छा।
1: और रेडियो मतलब खाना छोड़ देते हैं मगर फोन जरूर लगाते हैं।
0: तो आपको कौन से प्रोग्राम पसंद है सबसे ज्यादा?
1: सबसे ज्यादा तो ये हेलो सहेली है, और पहले तो सच्ची सहेली आता तो उसमें लेटर भी शामिल किया करते थे मैडम, तो अगर वो लेटर के साथ अगर शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग समीक्षा भी लिखते थे उसमें, रिसेप्शन भी लिखते थे पहले, तो आप लोग बहुत शामिल भी करते थे, अच्छी अच्छी बातें लिखते थे हम लोग, तो कभी ऐसा हो जाए तो और अच्छी बात रहेगी, सोने भी सुहागा हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सब तक पहुंच रही है। तो बताइए और क्या क्या करती हैं, आपको क्या पसंद है करना ये बताइए।
1: सिलाई करती हूँ मैडम मैं अधिकतर, तो ज्यादातर तो, और घर में काम भी, छुट्टी रहती है तो घर में काम करना भी अच्छा लगता है,
0: ये तो बहुत जरूरी चीज है,
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ तो ये बताइए आप क्या क्या सिल लेती हैं?
1: ये गनी पैक का काम करते हैं मैडम, जूट का होता है।
0: अच्छा, तो इसमें आप क्या, मतलब क्या करना होता है, क्या बनाती हैं आप?
1: इसमें मशीन से रिपेयरिंग होता है, नहीं होता मशीन से नहीं चलता तो फिर हाथ से रिपेयरिंग करते हैं मैडम।
0: अच्छा, आप हाथ से भी कर लेती हैं?

0: मास्टर अपोर्ट है मैडम।
1: अच्छा, तो बहुत ही मतलब आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत है। बताइए आपको और क्या करना अच्छा लगता है?
0: रेडियो सुनना अच्छा लगता है मैडम, आप लोगों से बात करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
1: कुछ गाना गाना नहीं अच्छा लगता आपको? आवाज से लग रहा है मुझे
0: गाना
1: आपकी।
0: गाना अच्छा लगता है ना मैडम, आके बताते हो।
1: देखा ना, मैंने आपकी आवाज से पहचान लिया।
0: जी, फिल्म
1: तो
0: का नाम है फूल और अंगार और मेरी फरमाइश भी यही है। और गाने के बोलने, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। ये सुना दीजिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो सुनाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, हम बड़ागांव जिले में ना चंचल ढाकर बोल रहे हैं।
0: आप क्या करती हैं?
1: मैं
0: आपके
1: 10th क्लास पढ़ती हूँ।
0: अच्छा 10th में आप पढ़ाई कर रही हैं, तो कौन से विषय से आप पढ़ाई कर रही हैं? आपको कौन सा विषय सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है?
1: हमको सबसे अच्छा विज्ञान लगता है, मतलब
0: विज्ञान? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विषय है। और बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपके आपके शौक क्या है? जो आप पढ़ाई के बाद आपका जो समय बचता है तो उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मुझको, मतलब मेरा शौक ये है कि मैं आगे चलकर डॉक्टर बन जाऊं।
0: डॉक्टर बनना है आपको? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है भाई। ये तो कि आप लोगों की सेवा करना चाहती हैं, डॉक्टरी करना चाहती हैं। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनी सुनी सॉन्ग सुनना चाहते हैं सलमान खान का।
0: तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार। तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं ग्राम बरथी पोस्ट कर रही हूँ, जिला चंदौली से इमृति यादव बोल रही हूँ। आप बोल रही हैं आरती श्रीवास्तव।
0: पहचान लिया आपने। तो सबसे पहले बताइए आपको क्या करना पसंद है?
1: मुझे मैं घर में रहती हूँ, थोड़ा बहुत घर का काम करती हूँ। मैम रेडियो के प्रोग्राम में सुनती हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, तो प्रोग्राम सुनती हैं, तो आपको कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा पसंद है?
1: सभी प्रोग्राम अच्छा लगता है, और खासकर हमें सखी सहेली सुनना बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोग बातें करते हैं और हंसते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: आपको बहुत अच्छी बात है ये, आपको सखी सहेली अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए आप, जैसे कि आप गाने सुनती हैं, तो आपको कैसे, क्लासिकल गाने ज्यादा पसंद हैं या फिर आज के समय
1: जी
0: के?
1: नहीं, हर तरह के गीत पसंद है, नए हो पुराने हो, भक्ति हो या हिंदी हो, मुझे हर तरह की चीज पसंद है। और रेडियो सुनना मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। रेडियो से जो हमें कहीं से
0: हाँ,
1: खुशी नहीं मिलती वो रेडियो से मिलती है।
0: ये तो सही बात है। अगर संगीत जो होता है ना, वो एक दूसरे से बांध देता है ना, और
1: जी
0: साथ ही हमारे सारी परेशानियों को थोड़ी समय के लिए सही, लेकिन दूर कर देता है। और आप जो ये प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे संगीत पे बेस्ड बहुत सारे प्रोग्राम है जो रागों के ऊपर होते हैं, क्लासिकल
1: जी
0: संगीत
1: मैम,
0: के प्रोग्राम है, वो सब भी आप सुनती हैं?
1: जी मैं हर तरह के गीत पसंद है और गाते भी हैं थोड़ा सा रेडियो के साथ में।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। गाना जब हम गाते हैं ना, तो सोचिए अपने अंदर के एकदम ऐसा लगता है ना कि हम अपने अंदर का भी जो जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारे अंदर तनाव था, जो परेशानियां थी, वो खत्म हो रही हैं, धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, रिलैक्स हो जाते हैं ना, एकदम ऐसा लगता है ना।
1: जी अच्छा लगता है।
0: तो आपको जो गाना सुनना है ना, वो आप गा के सुना दीजिए। बता दीजिए हमें।
1: मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते। मैं
0: नमस्ते। आप बताइए कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं।
1: मेरा नाम नाजमीन है। मैं गांव हरपाल से बोल रही हूँ, जिला सारण के पास से। मैं
0: तो आप बताइए, आप पढ़ती हैं या कुछ जॉब करती हैं या घर में रहती हैं, क्या करती हैं आप?
1: घर में ही रहती हूँ, घर का ही काम करती हूँ। जी,
0: अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है ये तो। और ये बताइए आपके घर में कौन कौन है?
1: हमारे घर में अम्मी है, अब्बू है, दो बहने हैं, भाई है, सब है हमारे घर में।
0: अच्छा, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपके क्या शौक हैं?
1: मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है,
0: तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: और गाने के बोल उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में।
0: ओ ठीक है, तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी, मैं मीनू अग्रवाल बोल रही हूँ, मथुरा से। मैं
0: अच्छा, तो बताइए मीनू जी, आप क्या करते हैं? आपको क्या करना पसंद है?
1: घर में भी रहती हूँ और मैं घर पे ट्यूशन लेती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। और बाकी का मेरा मेरा जो इंटरेस्ट है ना, वो जैसे कि पेंटिंग है ना,
0: हाँ,
1: और सबसे ज्यादा कुकिंग में है मुझे इंटरेस्ट। तो
0: अरे वाह, बहुत अच्छी
1: मुझे
0: बात है।
1: हाँ, तरह तरह का खाना बनाना अच्छा लगता है
0: कौन कौन से तरीके के खाना बना लेती हैं आप?
1: जी। मैं वैसे तो अपना यही इंडियन फूड ही ज्यादा बनाती हूँ, और बाकी का हाँ, बाकी का ये है कि और भी चीजें मेरे पे आती हैं, जैसे साउथ इंडियन डोसा, इडली, सांभर वगैरह, ये सब
0: अरे वाह,
1: चीजें।
0: क्या बात कर रही हैं आप! इतनी तरीके की चीजें आप बना लेती हैं घर में?
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: तब तो आपके फैमिली, आपके जो परिवार हैं, सब लोग आपसे बहुत खुश रहते होंगे, है ना? आप बना बना के
1: हाँ
0: अच्छी अच्छी
1: जी,
0: चीजें
1: कहते
0: खिलाती होंगी।
1: हैं ना, हाँ जी कहते हैं ना कि इंसान की जो पहली पसंद होती है ना, घर में जो मेंबर्स होते हैं उनकी पहली पसंद होती है खाना। अगर उनको खाना हमने अच्छा दे दिया ना बना के, तो बस। मैंने अभी बताया था पेंटिंग कुकिंग वगैरह है, तो मैं
0: हाँ,
1: पेंटिंग्स वगैरह बनाती हूँ
0: अरे वाह,
1: और सेल भी होती है, ऐसी बात नहीं है मेरी पेंटिंग्स वगैरह।
0: बहुत ही, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप ड्राइंग कर लेती हैं, आप पेंटिंग बनाती हैं, आप खाने तरह तरीके की बना लेती हैं,
1: हाँ
0: बहुत अच्छी
1: जी
0: बात है ये तो। और आप ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाइए, और किसी दिन हमें भी आप बुलाइए ताकि हम भी आएँ और आपने जो बताई हैं चीज़ें उनका हम भी कुछ लुत्फ़ उठा सकें। क्योंकि
1: अरे अरे
0: बहुत
1: अरे
0: अच्छी चीज़ है, आपको तरह तरह की चीज़ें करनी आती हैं। तो बताइए मीनू जी, आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: जी, मैं दो कलिया मूवी का गाना सुनना पसंद करूंगी, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई।
0: अरे वाह, बहुत प्यारा सा गीत है। तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी, चलते चलते आपको जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपके कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब दूसरा फ़ोन नंबर भी नोट कर लीजिए जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश नहीं हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी न कभी कामयाब जरूर होते हैं और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीनों तक कॉल ना लगाएं और अपनी सखियों को अवसर दें अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले जी का, साथ ही संपादन में सहयोगी बनी है नम्रता टिकोले और विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: रहे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती कार्यक्रम गीतों भरी कहानी, बस थोड़ी ही देर के बाद।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्याम महेश्वरी की कहानी भाई हो तो ऐसा। वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का।
2: अज्जू विज्जू की जोड़ी हमेशा चर्चा में रहती। परिवार में कहीं भी कुछ भी काम हो, जन्म मरण, शादी ब्याह, दोनों भाई लगकर काम करते। अज्जू माने अजय बड़ा भाई और विज्जू माने विजय छोटा भाई। 8 साल का अंतर था दोनों में, लेकिन दोनों की पट्टी बहुत। पटने का कारण था बड़े भैया अजय। विज्जू का बड़ा ध्यान रखते और विज्जू बड़े भैया को भगवान मानता। माने भी क्यों ना, पिक्चर जाना हो, वो भगत जी की रबड़ी जलेबी खाना हो या कुछ और, बड़े भैया अज्जू ही बंदोबस्त लगाते। विज्जू को पिताजी से बड़ा डर लगता, लेकिन अज्जू भैया में कुछ बात थी, पिताजी उनकी बात मान ही जाते। दोनों के बीच में दो बहनें, वो बड़ी वाली बड़े भैया की चमची और छोटी वाली विज्जू की सहेली। पूरा कुनबा बाहर से चाक चौबन दिखता और अंदर से उससे भी ज्यादा मजबूत।

उस दिन विज्जू ने बड़ा खेल कर दिया। स्कूल से एक पत्र मिला था चेतावनी वाला, यदि विजय 6 मासी परीक्षा के किसी भी विषय में फेल हुआ तो फाइनल एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा। विजय बाबू ने चतुराई से उस चेतावनी पत्र पर पिताजी के हस्ताक्षर खुद कर दिए। 6 मासी परीक्षा हुई और विजय बाबू फेल हो गए। पत्र के आधार पर पिताजी को तलब किया गया। अब पिताजी को कहाँ से और कैसे ले आए विजय? परीक्षा वरीक्षा तो बात की बात थी, पिताजी तो इस कृत्य पे विजय की पहले ही जान ले लेते। ये बात बड़े भैया अज्जू को बताई गई और वो पहुँचे स्कूल विज्जू के अभिभावक बन के। बड़े भैया के इशारे पर विज्जू प्रिंसिपल मैडम के पैर में लौट गया, लेकिन प्रिंसिपल मैडम टस से मस ना हो। फिर अचानक पता नहीं क्या सूझी भैया को, बड़े ड्रामाटिक अंदाज में खुद पैरों पर गिर पड़े प्रिंसिपल मैडम के और माफ़ी मांगने लगे। प्रिंसिपल मैडम की तो हंसी छूट गई और फिर हिदायतें देकर माफ़ भी कर दिया विज्जू को। विज्जू परीक्षा में फिर पास भी हो गया, लेकिन उस वाक्य को याद करके आज भी आंखें गीली हो जाती है अपने भैया की उदारता।

विजय कुछ 18-19 साल का रहा होगा। बड़े भैया अब दुनिया की आपाधापी में उलझ गए थे, 4-5 तरीके के धंधों में हाथ आजमाया, लेकिन कहीं कुछ बात बनी नहीं। उम्र हो गई थी सो उनकी शादी की बात चल निकली थी, और ऐसे में काम का ना होना और बड़ी दिक्कत दे रहा था। भैया के किए सारे एहसानों का विजू को स्मरण हो आया। यही वजह रही होगी शायद, भैया जो बोलते विजू कर डालता। मतलब वो दादाजी के खेत संभालने की जिम्मेदारी आई विजू पे, तो भैया के कहने पर वो भी कर दिया। वो जो नहीं बोलते विजू वो भी कर देता। वो कचरे से बिजली बनाने का काम किया भैया ने, तो विजू फैक्ट्रियों में घूम घूम के कचरा भी लाद लाद के इकट्ठा करता रहा। बड़ी बहन हालांकि बड़े भैया से छोटी थी, लेकिन उनकी शादी बड़े भैया की शादी से पहले हो गई। विजू शादी में इतना काम कर चुका था कि बहन की विदाई का समय आते आते वो कहीं पसर के सो गया। बड़े भैया ने ही आकर जगाया, बोले दीदी विदा हो रही है, आ जा, उनको बाय बोलकर सो जाना। मम्मी और बड़े भैया खूब रोए दीदी के विदाई पे। विजू को दीदी के जाने का रोना तो नहीं आया, लेकिन भैया को इतना रोते देख वो भी रो दिया। बैंड वाले ने वो विदाई वाला गाना बजा के माहौल और भी गमगीन कर दिया था।

0: जा।
1: बड़ी बहन की शादी के बाद दादाजी चल बसे। अज्जू भैया का वो बिजली उत्पादन कारखाना भी बंद हो गया, मतलब वो चालू था लेकिन भैया वहां जाते नहीं थे। पता नहीं पार्टनर्स लोगों से कुछ झगड़ा हुआ था शायद, पता नहीं। विज्जू कभी भैया से सवाल नहीं करता था, उसे लगता था भैया जो कर रहे हैं वो सही ही है। दादाजी के जाने के बाद पिताजी और बड़े भैया एक दिन विज्जू के पास आए कुछ प्रॉपर्टी के कागजातों के साथ। उन्होंने विज्जू से उन कागजातों पर 8-10 जगह साइन करवाए। विज्जू को याद आया उसे नदी में तैरना सिखाया बड़े भैया ने। वो पानी में थोड़ा दूर जाकर खड़े हो जाते और विज्जू से कहते, कूद जा मैं खड़ा हूँ तुझे संभाल लूंगा, और विज्जू कूद जाता। विज्जू हाथ पैर मार के उन तक पहुंचता तो वो और पीछे चले जाते, और बस यही खेल कर करके तैरना सिखा दिया भैया ने उसे। अब तो भैया कहें इस कुएं में कूद जा तो वो कूद जाए। इन कागजातों पर हस्ताक्षर कौन सी बड़ी बात थी? भैया के भावों से विज्जू को हमेशा यही लगता जैसे कह रहे हों तो चिंता मत कर, मैं हूं ना।

बड़े भैया की शादी की बात चल निकली, उनके लिए लड़की ऐसे ढूंढी जा रही थी कि बस राजकुमारी मिल जाए। भैया ठहरे भी गोरे चिट्टे स्मार्ट, दुल्हन अच्छी मिली, मतलब भैया जितनी गोरी तो नहीं लेकिन शांत स्वभाव की दिखी। हंसने में थोड़ी कंजूस मालूम पड़ती थी लेकिन विजय अपनी हंसी में उनको शामिल कर ही लेगा। इतना जोर जोर से हंसता है, कहाँ तक बचेगी भाभी प्यारी। सबसे ज्यादा उछलना विजू को ही आया भाभी के आने का। अलग अलग पकवान तरकारी खिलाएगी, गप्पे लड़ाएगी, ताश खेलेंगे घंटों बैठकर, और वो नदी किनारे पानी पूरी खाने जाएंगे और पता नहीं क्या क्या नाच नाच के काम किया विज्जू ने शादी में। विज्जू से बड़ी बहन की शादी, मतलब वो जो तीसरे नंबर की बहन, उसकी शादी भी साथ ही में हो गई। सहेली जैसी बहन गई तो सहेली जैसी भाभी आ गई। विज्जू अलग अलग तरीकों से बार बार बोलता, मेरी भाभी। ये बोलने में उसे बड़ा मजा आता, कारण तो नहीं पता लेकिन बेवजह ही इस उद्बोधन को हर बात में ले आता। मेरी भाभी ये, मेरी भाभी वो, मेरी भाभी, मेरी भाभी।

0: और विज्जू लाल आकर भाभी को देता। कभी मकई की टिक्की, कभी मखाने की खीर, कभी मेथी मटर के कोफ्ते मलाई वाली सब्जी। लेकिन एक के बाद एक भाभी ने कुछ नहीं बनाया शादी के बाद। विज्जू उनके चेहरे पर हंसी तो नहीं ला पाया, उल्टा जो एक हल्की सी वो मोनालिसा मुस्कान दिखती थी कभी, वो भी गायब हो गई। उम्र कम थी विज्जू की, लेकिन समझ में आ रहा था कि उसकी माँ और भाभी की पटती नहीं थी। वही वो सास बहू वाला एंगल कह सकते हैं। विज्जू का दिल टूट गया। सुख बुघाट ये भी थी कि भैया का कुछ काम जम नहीं रहा था। अब वो तेल का धंधा कर रहे थे कुछ, आसपास वाले बताते हैं कि शायद तेल का सट्टा कर रहे थे। विज्जू के लिए ये सब कुछ समझ से परे था। आदतन कोई सवाल तो विज्जू करता नहीं था भैया से, लेकिन कुछ शंकाएं जरूर आई उसके मन में। अब घर में चुप्पी सी रहने लगी थी, अशांति वाली चुप्पी। विज्जू हंसमुख मिजाज का सरल लड़का रहा, ये सब कैसे भाता उसे। घर में टूटे तार बिखरे पसरे दिखने लगे। टिमटिमाती चमक लिए विज्जू की आंखों में अब सूनापन दिखने लगा।
1: झूठा

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। चलिए हमेशा की तरह करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर से विचार से, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी का।
2: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
0: और छत्तीसगढ़ लुकाउपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी जी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी।
2: सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
0: आप सबके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
0: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक विकास की।
2: कल हमने बात की थी मिस्र की सभ्यता की और जाना था कि कैसे उन्होंने पेपरस को लेखन सामग्री बनाया और लेखन की विधा का विकास किया। आज के एपिसोड में हम खोलेंगे एक और नया और बेहद रोचक अध्याय।
0: तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारत की, यानी अपने देश की। तब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। हम सभी जानते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ
2: जी।
0: लेकिन आइए अब जानते हैं कि भारत में लोग लिखते कैसे थे।
2: प्राचीन भारत में ज्ञान का संरक्षण मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से होता था,
0: यानी वाचिक परंपरा
2: जी। वेदों को गुरुओं ने हजारों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से संरक्षित रखा। धीरे धीरे लेखन का प्रचलन बढ़ा।
0: श्रोताओ, भारत में लिखने के लिए भोजपत्रों का इस्तेमाल हुआ। भोजपत्र एक विशेष प्रकार का लेखन पत्र था जो भोज या भूर्ज वृक्षों की छाल से बनाया जाता था। बता दें कि ये वृक्ष हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में, विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है
2: जी।
0: अब प्रश्न ये उठता है कि भोजपत्रों को लिखने योग्य कैसे बनाया जाता था। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: अजीत जी, भोज या भूर्ज वृक्ष की बाहरी छाल को सावधानी से निकाला जाता था। उन्हें सुखाकर और समतल बनाकर उन पर वनस्पति से बनी स्याही से लिखा जाता था
0: जी। श्रोताओं, भोजपत्रों पर कई प्राचीन पांडुलिपियां लिखी गईं। जब कागज नहीं था तो भोजपत्र ही विद्वानों का नोटबुक था। भोजपत्र पर ऋग्वेद, अथर्ववेद और कश्मीर क्षेत्र में राजतरंगिणी की मूल प्रतियां मिली हैं। अनेकों बौद्ध ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। कई प्राचीन नाटक भी भोजपत्रों पर लिखे मिलते हैं।
2: तो श्रोताओं, भोज वृक्ष की छाल पर सिर्फ शब्द ही नहीं लिखे गए, उनमें भारत का इतिहास, धर्म, संस्कृत, साहित्य, गणित, ज्योतिष और दर्शन भी सुरक्षित किया गया।
0: और हाँ श्रोताओ, भोजपत्र के अलावा दक्षिण भारत में ताड़ पत्र पर भी लिखा जाता था। इसके अलावा ताम्र पत्र और शिलालेख भी हमें मिलते हैं।
2: लगभग पहली दूसरी शताब्दी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मिस्र में स्क्रॉल बनाए जाते थे, पन्नों पर भी लिखा जाता था। लेकिन अब मानव सभ्यता में शुरू हुआ एक और नवाचार
0: जी।
2: लोगों ने पन्नों के किनारों को जोड़कर पुस्तक बनानी शुरू की। अजीत जी, उन पुस्तकों को क्या कहा गया?
0: विमलेश जी, उन पुस्तकों को कोडेक्स कहा गया, जो आधुनिक पुस्तक का पूर्वज है
2: जी।
0: कोडेक्स प्रारूप से बहुत से लाभ हुए, जैसे किसी भी पृष्ठ पर तुरंत पहुंचा जा सकता था, पन्नों के दोनों ओर लिखा जा सकता था
2: और अधिक से अधिक जानकारी एक ही पुस्तक में संग्रहित की जा सकती थी
0: जी।
2: कोडेक्स का विकास रोमन साम्राज्य में हुआ। आइए जानते हैं कुछ और बातें।
0: मध्य युग में पुस्तकें चर्म पत्रों पर भी लिखी जाती थी
2: जी।
0: यूरोप के मठों में विशेष कक्ष होते थे जिन्हें स्क्रिप्टोरियम कहा जाता था।

0: यहां लोग रात दिन बैठकर मूल पांडुलिपियों की नकल करते थे
1: जी।
0: लिखने या नकल करने वालों को स्क्राइब्स कहा जाता था।
1: नकल करने वालों को बहुत सावधान रहना होता था। वे धीरे धीरे शब्द ब शब्द कई बार ऊंचे स्वर में पढ़कर और उन्हें दोहरा दोहरा कर लिखते थे क्योंकि कोई गलती न हो जाए, क्योंकि गलती हो जाने पर लिखे हुए शब्दों को मिटाने की उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्हें चाकू से खुरचना पड़ता था जिससे कागज या चर्म पत्रों को नुकसान होता था
0: जी। तो धीरे धीरे कोडेक्स प्रारूप ने पुस्तकों का रूप धारण किया और इनसे मानव सभ्यता के पठित ज्ञान में और अधिक वृद्धि हुई।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: कोडेक्स किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: कोडेक्स किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन के एक पाठ पर आधारित है जिसमें विश्वव्यापी समस्या जलवायु परिवर्तन के बारे में उदाहरणों सहित सविस्तार समझाया गया है और बताया गया है कि इसका निदान किन किन उपायों से हो सकता है।
0: जलवायु परिवर्तन।
2: साथियों नमस्कार, मैं हूं दिनेश, आप सबका स्वागत है हमारी रेडियो गोष्ठी में। आज की गोष्ठी का विषय है धरती करे पुकार। साथियों, इन दिनों सभी संचार माध्यमों में एक विषय छाया हुआ है और वो विषय है जलवायु परिवर्तन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को बुलाया है, डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: साथियों, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर पर्यावरण संकट है जिससे आज सारी दुनिया जूझ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर नमिता से। तो नमिता जी, पहला प्रश्न ये है कि जलवायु परिवर्तन है क्या? क्या इसे मौसम का परिवर्तन कहेंगे?
3: सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में बहुत अंतर है
2: जी।
3: मौसम परिवर्तन क्षेत्रीय या स्थानीय होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन बिल्कुल अलग है
2: जी। लेकिन वो कैसे?
3: जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं जलवायु शब्द पर। ये दो शब्दों से बना है, जल और वायु
2: जी।
3: यानी जलवायु परिवर्तन में जल और वायु की स्थिति में परिवर्तन को मापा जाता है
2: जी।
3: लेकिन एक बात ध्यान देने की है और वो ये कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक है यानी वर्ल्ड वाइड
2: जी।
3: तभी तो दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं और विचार विमर्श के लिए एक मंच पर आ रहे हैं।
4: देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर एक वैश्विक मंच बनाया है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। और जानते हैं, इस मंच की स्थापना सन 1992 में हुई थी
2: जी।
4: वैसे जलवायु परिवर्तन कई कारणों से क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, लेकिन सारांश में कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव होता दिखाई दे तो ये जलवायु परिवर्तन है
2: जी। डॉक्टर दिवाकर, अब मेरा प्रश्न आपसे है
4: जी।
2: आप हमें बताइए कि जलवायु परिवर्तन के संकेत क्या क्या है, यानी हम कैसे जाने कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है?
4: बहुत अच्छा प्रश्न है दिनेश जी। देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम के प्रकार और ऋतुओं का स्वरूप कई वर्षों या दशकों में बदलने लगे
2: जी।
4: और स्थायी हो जाए तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
2: जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमारे जमाने में मौसम ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल बदल गया है
4: जी
3: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक उदाहरण लीजिए, जैसे यदि आज से 20 वर्ष या लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो गई है, पहले बारिश बहुत होती थी लेकिन अब कम या पहले से बहुत ज्यादा हो गई है
2: जी।
3: और ये स्थानीय तौर पर ही नहीं लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में या वैश्विक हो गई है, तो ऐसी स्थिति को हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे
4: जी। जैसे कि अनियमित बारिश और बाढ़ का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना और इनके कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, बहुत अधिक संख्या में तूफानों या चक्रवात का आना और फसल, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के लक्षणों का दिखाई पड़ना।
2: लेकिन

0: शंकर जी, इसके कुछ कारण तो होंगे?
1: बिल्कुल दिनेश जी, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक है ग्रीन हाउस गैसों यानी हरित गृह गैसों का बढ़ना। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर ये बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसें सूरज की रोशनी को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को रोक लेती हैं।
0: अच्छा
1: जी, और इससे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
0: डॉक्टर नमिता
2: जी,
0: हमारे विद्यार्थी श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं।
2: इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों के लिए गर्मी या तापमान को अंदर ही बनाए रखने के लिए शीशे का घर बनाया जाता है,
1: और इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जहाँ तक ग्रीन हाउस गैसों की बात है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इत्यादि प्रमुख गैसें हैं। जी, तो इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती।
2: एक और उदाहरण लीजिए, जैसे धूप में खड़ी कार कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी कार के बंद होने से अंदर ही फंस जाती है।
1: जी,
2: ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के लिए ऐसा ही काम करती हैं।
0: अच्छा,
2: और फिर होता ये है कि हिमखंड पिघलते हैं, बाढ़ तूफान बढ़ जाते हैं, इससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगता है।
0: बहुत सुंदर उदाहरण दिया। तो आप बात करते हैं जलवायु परिवर्तन होता क्यों है?
1: देखिए दिनेश जी, सबसे बड़े कारणों में से एक है जंगलों की कटाई, और कटाई की तुलना में पेड़ कम लगाना। वैसे नमिता जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो जाहिर है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी।
0: बिल्कुल,
2: और इससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा।
1: जी,
2: और तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे, और इससे बाढ़ तो आएगी ही।
0: बिल्कुल,
2: समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा।
1: एक और जरूरी बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा।
0: जी,
1: शोध बताते हैं कि पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन हुए, लेकिन बहुत कम।
0: जी,
1: लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला इत्यादि को जलाने, वनों की कटाई करने, वाहनों और उद्योगों के बढ़ने के कारण बहुत अधिक हुआ, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ा।
0: जी, इन दिनों अक्सर कहा जाता है कि कोयला, पेट्रोल और ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें। क्या वाहन, कारखाने और मशीनें भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं?
2: जी बिल्कुल, वाहनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कारखानों और भारी मशीनों से भी बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इनका उपयोग आप संतुलित तरीके से करें।
0: जी, तो आइए अंत में जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका कैसे जा सकता है।
1: देखिए दिनेश जी, पहली बात है पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना।
2: बिल्कुल,
1: और यदि पेड़ काटे भी जाएं तो काटने की तुलना में और अधिक पेड़ लगाए जाएं।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात ये है कि हम वाहनों और कारखानों के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करें।
1: जी,
2: और जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करें।
0: बिल्कुल, तो आइए अब जानते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं।
2: साथियों, समाचारों में आप अक्सर बाढ़, तूफानों, भूकंप इन सब बातों की चर्चा सुनते रहते हैं। इसका कारण बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन ही तो है।
1: जी
0: बिल्कुल,
1: और दिनेश जी यहाँ पर मैं आपके श्रोताओं से एक विशेष बात साझा करना चाहूँगा।
0: जी,
1: क्या आपको पता है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? भाई अब तो ठंडे कहे जाने वाले पहाड़ी इलाकों का भी तापमान बढ़ गया है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। अब उदाहरण के लिए 2025 के बाद से हमारे देश का औसत तापमान 1-3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है।
1: जी,
2: जिसके कारण सर्दी सामान्य से बहुत कम थी और गर्मी सामान्य से ज्यादा।
0: ये तो बड़ी गंभीर बात है, और ऐसा दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। अभी समय है इस पर गंभीरता से विचार करने का और उस पर अमल करने का।
1: जी,
0: कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर नमिता,

0: और डॉक्टर दिवाकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शिक्षक कुछ नए आयाम।
3: इस कार्यक्रम में एक आदर्श शिक्षक की भूमिकाओं की चर्चा की गई है और कतिपय शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताया गया है जिनके द्वारा शिक्षक बच्चों को नवाचारी विधियों के प्रयोग से बच्चों को और अधिक बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं।

0: अक्सर अध्यापक ये प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा में मूल परिवर्तन क्या हो रहे हैं। वही विद्यालय हैं, वही शिक्षक हैं, वही पुस्तकें हैं, वही विषय हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इन समानताओं में भी कहीं कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। आइए हम इसी संदर्भ में दो कक्षाओं का अवलोकन करें।
1: चलो अपना अपना पार्ट निकालो
2: जी,
1: तुम्हें भी कह रहा हूँ। चलो शाबाश, हाँ गोपाल इसको बोलो, हाँ इधर मेरी तरफ देखिए, हाँ शाबाश। अब मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे पीछे दोहराना।
2: जी गुरुजी,
1: समझ गए
2: जी।
1: अच्छा शुरू करते हैं हम।

0: गुरुजी, पानी का उपयोग घर के अलावा बाहर भी तो करते हैं, फिर किताब में केवल घर ही क्यों लिखा है?
1: तुमको कई बार कहा है कि जो किताब में लिखा है उसको पढ़ो और बीच बीच में मत बोलो।
0: जी
1: गोपाल
2: जी।
1: बेटा आगे तुम पढ़ाओ।
2: जी गुरुजी। पानी
3: पानी,
2: कुओं
3: कुओं,
2: नदियों
3: नदियों,
2: तालाबों
3: तालाबों
2: एवं झरनों से मिलता है,
3: एवं झरनों से मिलता है।
0: गुरुजी, झरना क्या होता है? मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में ही नहीं आते।
1: फिर बीच में बोले, आगे पढ़ो, चलो चलो शाबाश।
2: गंदे पानी के प्रयोग से अनेक बीमारियां हो जाती हैं।
0: गुरुजी।
1: हाँ बोलो।
0: पानी गंदा कैसे हो जाता है?
1: बीच बीच में ना बोलो, तुम अपना अपना पाठ पढ़ो। चलो
2: जी,
1: चलो
2: जी,
1: ठीक से बैठो, पीछे हो जाओ।
4: आइए अब हम एक और कक्षा में चलें।
5: नमस्ते नमस्ते बच्चों, नमस्ते। अच्छा बच्चों, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पानी के कौन कौन से साधन हैं, ठीक?
2: जी।
5: अच्छा तो बच्चों बताओ, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है?
6: हमारे गांव में दो कुएं हैं, एक तालाब भी है।
5: अच्छा
2: मास्टर जी, हमारे मामा के गांव में नदी बहती है, नदी उसी से पानी लाते हैं।
5: शाबाश, बिल्कुल ठीक।
0: मास्टर जी, वर्षा से तो पानी पानी हो जाता है।
5: हाँ हाँ, ये भी ठीक है।
7: मास्टर जी, हमारे घर में तो नल है।
5: शाबाश भाई। बच्चों तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इन साधनों के अलावा पानी और भी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे झरने, झील, तालाब, बावड़ी आदि।
2: मास्टर जी।
5: हाँ हाँ बोलो।
2: क्या हम सागर और बादलों को भी पानी का स्रोत मानेंगे?
5: हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा आप सब बच्चे ये लिखें कि पानी का प्रयोग किन किन कामों में करते हैं, ठीक?
2: जी।

0: लिखो फिर सब लिखो।
1: सुना आपने दोनों कक्षाओं के अंतर को, पहली में भय का वातावरण था और दूसरी में आश्चर्य, खोज, जिज्ञासा और आनंद का। आज के परिपेक्ष में अध्यापक की यही भूमिका उभर कर आई है। इस भूमिका में बच्चों को सहज समझने और सीखने के अवसर मिलते हैं। शिक्षण के ऐसे अवसरों को अब श्रीमती श्याम की कक्षा में देखें, जिन्होंने अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए एक खेल बना दिया है।
2: दीदी
3: बोलो मालती।
2: दीदी मुझे तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझ में ही नहीं आते।
3: तुम शब्दकोश में अर्थ ढूंढो और उसके अभिप्राय को समझो।
2: हाँ दीदी। अब मैं एक कॉपी में सारे मुश्किल शब्द लिख लूंगी।
3: ठीक।
2: फिर उनके अर्थ भी शब्दकोश में से देखकर लिख लूंगी।
3: हाँ, फिर तो तुम पाठ को सीखने के प्रयास में उन शब्दों का अभिप्राय भी समझ सकोगी।
2: जी।
3: इसके बाद तो तुम्हारे पास अपना ही एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो जाएगा।
2: वाह, एकदम मेरा अपना शब्दकोश।
3: हाँ।
1: अब जिस शब्द पर अटको शब्दकोश देखो और समझो। शब्दकोश सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, शकुंतला श्याम भी देखती हैं। शकुंतला जी की यह शैक्षिक विधि थी जो छात्रों के स्तर को सहजता से ऊपर उठाने में काफी हद तक कामयाब थी। उनकी एक और शैक्षिक विशेषता थी, वो शिक्षण में एक मूलभूत सिद्धांत का प्रयोग करती थी। वो सिद्धांत था सीखने के प्रक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। वो अपनी कक्षा को एक खोज यात्रा में बदल देने में माहिर थीं। एक अन्य अध्यापिका श्रीमती इंदु बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक है। इंदु जी का पाठ हमेशा संवाद से शुरू होता है, यानी इंदु जी और बच्चों की बातचीत से। ये है इंदु जी के दिन की शुरुआत।
4: नमस्ते दीदी।
3: नमस्ते। नमस्ते बच्चों। नमस्ते
5: दीदी। ये,
3: अरे वाह, कितने सुंदर फूल हैं ये। प्रवीण, कहाँ से लाए तुम ये फूल?
6: दीदी, ये फूल प्रवीण अपने बगीचे से लाया है।
3: अच्छा
6: दीदी, इसके घर में बहुत सारे फूल लगे हैं।
3: सच? प्रवीण, इन फूलों के क्या क्या नाम है बताओ तो जरा।
5: गुलाब।
3: गुलाब, बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रवीण, और कौन कौन से फूल लगे हैं तुम्हारे यहाँ?
4: दीदी मैं बताऊँ?
3: नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्रवीण बताएगा। हाँ प्रवीण बताओ।
5: गुलाब। गेंदा।
6: चमेली।
5: और चमेली।
3: चमेली।
5: सूरजमुखी।
3: सूरजमुखी, शाबाश।
1: तो आइए इंदु जी से ही सुने उनके पाठ तैयार करने का ढंग। हाँ इंदु जी, आप जरा बताइए कि पाठ कैसे तैयार करती हैं?
3: देखिए, मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार मानती हूँ।
1: जी।
3: मेरे छात्र पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे जैसे प्रवीण बहुत शर्मीले हैं, और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि प्रवीण को खास तौर पर कक्षा से जोड़ा जाए। आपने सुना ना अभी कि मैंने प्रवीण से ही फूलों के नाम पूछे। उसके बाद बात चली पौधों के हिस्सों के बारे में। स्कूल के आंगन में जाकर हमने देखा कि पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अब सब बच्चे जानते हैं कि पौधों में जड़, तना, टहनी, पत्ते, फूल और फल होते हैं।
1: जी जी।
3: आप जानते हैं हमारी प्रयोगशाला है हमारे स्कूल के आसपास का क्षेत्र।
1: स्कूल के आसपास का क्षेत्र?
3: जी, कभी कभी हम सब घूमने निकलते हैं। मैं बच्चों को दलों में बांट देती हूँ। एक दल रास्ते में दिखे पौधों के नाम लिखता है, एक दल पत्तियों के नमूने जमा करता है, और सबसे छोटे बच्चे रास्ते में दिखे पक्षियों को गिनते हैं।
1: बहुत अच्छे।
3: इस तरह सभी बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। लौट कर हम

0: बच्चों से बात करते हैं कि किस मौसम में कौन से पौधे होते हैं और कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। इस तरह एक दिन में बच्चों ने पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
1: अरे इंदु जी, आपने तो गणित, वनस्पति शास्त्र और मौसम चक्र सब एक साथ सिखा दिया बच्चों को।
0: और मैंने भी तो सीखा इनसे
1: जी।
0: आपको मालूम है एक पक्षी है जिसके अंडे बहुत ही खूबसूरत हल्के नीले रंग के होते हैं।
1: हल्के नीले रंग के?
0: हाँ, मुझे ये बच्चों ने दिखाया।
1: अच्छा,
0: मैं जिस इलाके की हूँ ना, वहाँ ये पक्षी नहीं होता। और अब बच्चे एक लिस्ट बना रहे हैं।
1: काहे की लिस्ट?
0: कि किस महीने में कौन से पक्षी दिखते हैं इसकी। छोटे बच्चे पक्षियों के पंख जमा कर रहे हैं और बड़े बच्चे बताते हैं कि वो किस पक्षी का पंख है। बस इस तरह से एक एल्बम बन रही है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, कभी कभी बच्चे पक्षियों के बारे में कहानियां भी सुनाते हैं।
1: इंदु जी, आपका बहुत ही अच्छा ढंग है यूं खेल खेल में पढ़ाने का।
0: देखिए, बच्चों की पसंद अगर मालूम हो ना तो बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है।
1: ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दोस्तों, इंदु जी की कक्षा के बच्चे इन पाठों को शायद ही भूलेंगे। खुद करके सीखी चीजें हमेशा याद रहती हैं। शिक्षा का ये सहज आनंदपूर्ण ढंग बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को सहारा देता है। अपने पाठों को जितना हो सके प्रयोगात्मक बनाएं। एक बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रहे, बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही काम सौंपें और इस काम को चुनौतीपूर्ण बनाएं। 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग पौधों की पत्तियों के आकार और फूलों के रंग ठीक ठीक बता पाना चुनौती भरा है, तो 8 से 10 साल तक के बच्चों की रुचि शायद पक्षियों के घोंसलों के नमूने जमा करने में और कौन से पक्षी कहां घोंसला बनाते हैं ये जानने में होगी। किसी चुनौती को पूरा करना बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत पुष्ट बनाता है। एक काम सफलतापूर्वक करने पर बच्चे में अगले उससे और जटिल काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। अच्छे और सफल अध्यापक इस गुण को हमेशा इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पता लगेगा कि ये लोग बच्चों को अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने में मदद करते हैं। वो बच्चों के अनुभवों को पाठ का आधार बनाते हैं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी पाठ में बनाए रखते हैं। वो बच्चों को खुद करके सीखने और अपने अनुभव को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यही है अच्छी शिक्षा विधि का गुण।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षक कुछ नए आयाम। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोता बंधु शुणुले एनसीईआरटी प्रायोजित कार्यक्रम उमंग शुणुले 1339 अध्याय एवं शुणु से ही एनसीआर

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
2: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टि बाधित हूँ और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का।
2: गांव खिंदासा तहसील कोरायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
1: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
2: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रम्मा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
1: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों के लिए। तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। श्रोताओं, एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओं, जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
1: जी हाँ श्रोताओं, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
2: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
1: जी श्रोताओं, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया।
2: जी,
1: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थीं।
2: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्मा बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
1: जी श्रोताओं, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
2: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
1: जी तो श्रोताओं, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
2: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल

0: यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तप भूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
4: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
4: क्या 20 करोड़ साल?
3: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
4: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
3: नव्या, अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिदित तुम बताओ।
5: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
4: रुको रुको, मैं बताती हूँ।
3: तुम बताओ।
4: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
3: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
4: टैथिस महासागर।
3: वाह,
4: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
3: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
4: अलग होकर खिसकने लगे?
3: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
4: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
3: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
5: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
4: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
3: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक

0: एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहां उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
1: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
2: सर, आप तो टेथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
0: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
2: जी।
0: देखो, विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था, जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
2: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
0: बेटा, उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टेथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
2: अच्छा?
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
1: सर, मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
0: हाँ बेटा, क्यों नहीं।
1: ठीक, वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है, आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
2: अब समझ आया। सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है। इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
1: सर, एक खास बात तो हम भूल ही गए, टेथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टेथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
1: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था, वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
2: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
2: अच्छा, तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
3: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ। तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं।

0: जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
1: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
1: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
2: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी की दादी।
1: इस कार्यक्रम में स्वामीनाथन नामक एक बच्चे की सुंदर कहानी है, जिसमें उसके और उसकी दादी के बीच प्रेम और स्नेह के संबंध को बताते हुए संदेश दिया गया है कि बच्चों को अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर बल देता है।
2: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों

0: वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
1: आजा, आजा, आजा।
0: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
2: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है।
1: अच्छा?
0: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
2: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
0: स्वामीनाथन बोला।
1: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
0: दादी ने पूछा।
2: उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
1: अच्छा?
0: दादी काफी प्रभावित हुई।
1: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा,
0: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
2: बस काफी है दादी,
0: उसने रूखे स्वर में कहा।
2: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
1: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना,
0: दादी ने पूछा।
2: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
1: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
2: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
1: बोलो
2: दादी।

0: जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
1: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
0: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
1: अरे नहीं नहीं,
0: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
2: स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
0: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
3: अच्छा।
0: राजम उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
2: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
1: नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
0: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
1: दो शेर राजम पर झपटे थे,
2: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
0: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
1: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
2: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
0: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
1: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
2: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
0: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
3: अच्छा।
2: दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
1: तो हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में
2: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोता बंधु सुनुले NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनिले 1330 अध्याय। आपण मैंने कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी पूरी केन्द्र प्रचारित हो3.4 FM मध्यम कार्यक्रम समय हो प्रचार करुछु कार्यक्रम प्रतिबिंब। क्षमा करिवे, शुणंतु कार्यक्रम जुबवाणी।

0: ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 60 କୋଟି ଲୋକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଉପଚାର ପାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିଛି। ଆଜି ହିଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ବନାନ୍ତୁ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ 1455 ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।
1: ଶ୍ରୋତବନ୍ଧୁ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 103.4 FM କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ପୁରୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
2: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅରୋଡା। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधा में सुधार करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देना है। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है, उनके जीवन को सुगम बनाती है और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करती है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए

0: लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और सेक्टर 46 के सरकारी कॉलेज में छात्रावास भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुँच रहा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का दो दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारत की टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोता बंधु ट्यून करिछंती 103.4 एफएम कार्यक्रम सुनुछंती आकाशवाणी पुरी केंद्ररु।
3: नकली ऑफर्स प्रति सावधान।
4: आरबीआई कहे
5: सचेतन हुंतु, सतर्क रुहंतु।

17:30 प्रचार करिवो कार्यक्रम कृषि हलचल प्रसंग रहिची कृषि पाई मूर्तिका स्वास्थ्यर उपयुक्त संरक्षण एवं परिचालना ए संपर्क रे आलोचना करछंती डॉक्टर अंतर्जमी मिश्र मूर्तिका विज्ञान विभाग शिक्षा और अनुसंधान कृषि महाविद्यालय। राति 9:30 प्रचार करिवो कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी पुरी एवं राति 10:00 शुणिबे एक विशेष प्रस्तुति नाटक प्रचार करिवु आकाशवाणी कटक केन्द्रु। श्रोता बंधु शुणिले चलित अधिवेशन प्रचारित होगा कार्यक्रम सूचना।

0: ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେଲୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आसान हो जाएगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चलित मास 19 20 तारीख पर्यंत माल्डोभा उत्तर मासेडोनिया एवं रोमानिया को त्रिराष्ट्रीय गस्तरे जिबे। नूआदिल्ली रे गणमाध्यम को सूचना दे वैदेशिक व्यापार मंत्रालय रो पश्चिम प्रांत सचिव सिबी जॉर्ज कहिसेंते माल्डोभा गणतंत्र उत्तर मासेडोनिया एवं रोमानिया रो राष्ट्रपति मानंक निमंत्रण क्रमे श्रीमती मुर्मू एही सरकारी गस्तरे जिबे। से कहिसेंते एही गस्तर जथेष्ट ऐतिहासिक गुरुत्व रहिछे। कोनोसी भारतीय राष्ट्रपति को द्वारा माल्डोभा एवं उत्तर मासेडोनिया को एहा होछि प्रथम द्विपाक्षिक गस्त। रोमानिया गस्त विषय से कहते विगत तीन दशंधि मध्य कौन भारतीय राष्ट्रपति प्रथम गस्त। श्री जॉर्ज कहते यह पूर्व 1994 मसीह रोमानिया को भारत राष्ट्रपति गस्त करते। राष्ट्रपति गस्तर आभिमुख्य आलोकपात कर श्री जॉर्ज कहते यह गस्त मध्य और पूर्व यूरोप सहित भारत वृद्धि पाता संपर्क को दर्शाऊ अंचल देशगुड़िक सहित भागीदारी को मजबूत करने भारत प्रतबद्धता को दोहराऊ। राष्ट्रपति गस्त यूरोप सहित भारत व्यापक संपर्क एवं यूरोपीय संघ सहित यार रणनीतिक भागीदारी को आहुरी समृद्ध करिवो। केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कहते प्रत्येक ग्राम एवं प्रत्येक योग्य नागरिकों पक्षर बैंकिंग सेवा उपलब्धता को सुनिश्चित करने हो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दूरदृष्टि संपन्न पदक्षेप। आज आंध्रप्रदेश पलनाडु जिला अंतर्गत नरसराव पेटारे आयोजित क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में श्रीमती सीतारमण केन्द्र सरकार विभिन्न योजना अधीन 1,03,246 जन हिताधिकारी 3,216 कोटी टंकार ऋण सहायता बंटन कर। कार्यक्रम में आंध्रप्रदेश मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू उपस्थित रहा राज्य प्रति केन्द्र सरकार को प्रशंसा कर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ क्षतिपूरण एवं जरिमाना आदाय संपर्कित बदगुड़िकर सहमति भित्तिक समाधान पर विश्वास 2026 योजनार शुभारंभ कर। श्रम और नियोजन मंत्रालय कहिछि एही योजना एककालीन बिवाद समाधान एक माध्यम एवं यहा निजुक्तिदाता एक स्वच्छ संपूर्ण डिजिटल एवं समय सीमा मध्यरे योग्य मामलागुड़िकर समाधान करिवार सुजोग प्रदान करे। विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा दिनठारु यहा 6 मास पर्यंत बलवत्तर रहिबो बोली मंत्रालय सूचना देछि। पश्चिमबंगर कर्ण सुवर्ण रेल स्टेशन निकटरे आज घटिथिबा स्कूल भ्यान दुर्घटना नै रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव गभीर दुख प्रकाश करिसेंति। स्कूल भ्यान एवं यात्रीबाही ट्रेन मध्यरे होइथिबा एही दुर्घटना रे प्राण हराइथिबा प्रत्येक व्यक्तिक परिवार पई से 10 लाख टंका लेखाए अनुकंपामूलक सहायता राशि घोषणा करिसेंति। एथि सह पूर्व रेलबाईर महाप्रबंधक प्रधान मुख्य सुरक्षा अधिकारी नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय तदंत कमिटी गठन करने को निर्देश देते। घटना पर गेटमैन अनूप कर्मकार को गिरफ करा जिबा सह जणे रेल धारणा निरीक्षक कौशिक मल्लंकु निलंबित करा जायछे। निमतिता कटुआ यात्रीवाही ट्रेन आज एक स्कूल भ्यान एवं जणे साइकिल आरोही को धक्का देबा फल दुई जण स्कूल पिलांक समेत तीन जणकर मृत्यु होईछे। पांच जण आहत व्यक्ति वर्तमान बेहरमपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रे चिकित्सित होउछन्ते। क्रीड़ा क्षेत्र में स्वच्छता देशर आईन और प्रतिष्ठानगत व्यवस्था को सुदृढ़ करने लक्ष्य सरकार जातीय आंटी डोपिंग आईन 2022 एवं जातीय आंटी डोपिंग संशोधन आईन 2025 कार्यकारिता विज्ञप्ति प्रकाश करिसेंति। एही आईन क्रीड़ारे डोपिंग को रोकिबा आथलेट मानक अधिकार को सुरक्षित रखा एवं अंतर्जातीय स्तर में ग्रहणीय आंटी डोपिंग मानदंड अनुजाई क्रीड़ा प्रतियोगितार स्वच्छता बजाय रखापी एक व्यापक सांविधानिक भित्तिभूमि प्रदान करे। ईरान रो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी आज सीरिया कुवैत और ओमान में आमेरिकार सामरिक घाटीगुड़ लक्ष्य कर आक्रमण कर दावी कर। ईरान सरकारी संवाद संस्था अनुजाई आईआरजीसी एक बृत्ति में कही ऑपरेशन नस्र 2 एकादश द्वादश और त्रयोदश पर्यायर यह आक्रमण कर। सीरीयर अल तनफ अंचल में आमेरिकार एक स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेन्टर उपर ईरान सेना आकस्मिक भाव यह आक्रमण कर दावी कर। एक पृथक बृत्ति में आईआरजीसी जनसंपर्क विभाग कहिछे प्रथम पर्याय आक्रमण रे कुवैत्रे अमेरिकीय सेना थिबा एक घाटी को लक्ष्य करी आक्रमण करा जायथिला जेउथिरे अमेरिकार क्षेपणास्त्र प्रतिरोधी सर्वेक्षण राडार एकाधिक अस्त्रशस्त्र गोदाम दुईटी हाइमार्स लंचर एवं अनेक क्षेपणास्त्र को ध्वंस करा जायछि। परवर्ती समय रे ओमान रो सलमा मालभूमि रे थिबा एक नौसेना सर्वेलांस राडार एवं घानाम अंचल रे थिबा अमेरिकार एक एयर सर्वेलांस राडार को ईरान सेना आक्रमण करी नष्ट करि देथिबार दावी करिछि। भारतीय बैडमिंटन खेलाड़ी पीवी सिंधु जापान ओपन 2026 महिला सिंगल्स रो सेमीफाइनल रे प्रवेश करिसेंति। जापान रो पूर्वतन विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा क्वार्टर

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: विज्ञापन तो नेले जगा ना।
6: हाँ,
5: तमे तो जानिचो ए कार्यक्रम होउछ हम चासी भाई भौनी मान कर।
6: हाँ,
5: आउ आस ए भाई कोन सब चास करिचंती आ टिके ताका अनुभूति सुनिबा। आपणको आम कोठकर अनेक ने स्वागत। आपणको परिचय टिके देले।
6: मो ना सुरेंद्र प्रधान, ग्राम उत्तरकोणा।
5: कोन सब करचंती?
6: मो टमाटर चास करे, जनि चास करे।
5: हां,
6: एवं कलरा पटल चास करची।
5: अच्छा, से पटल चास संपर्क रे टिके कहिले।
6: पटल चास पर लाभदायक फसल, 4 फुट 5 फुट रे ओसार रे मंदा करी एवं तादरे खत सार देई और जो पटल गंडी अछि मिले हम पटल गंडी आनिके लगाउ। से पटल अछि दी प्रकार, गोटो अछि हमर लाभदायक पटल धळा एवं गोटो अछि कोळा। एक माई गछ साथीरे 10 मंदा माईरे गोटे बुदा अंडिरा गछ लगाओ, ता कोड़ खस करी सार औषध पानी पीड़ा दे से फल आरंभ हुए। पौष मास लगे माघ फगुण सहित से हमर पटल तोड़ा आरंभ कर।
5: आम देखे छोट छोट

0: ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 60 କୋଟି ଲୋକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଉପଚାର ପାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିଛି। ଆଜି ହିଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ବନାନ୍ତୁ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ 1455 ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।
1: ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ବଜାର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଅସୁମାରୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ବଜାରରେ SHG ମା ମାନଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତକଳା ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ମିଲେଟ୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ ସାମଗ୍ରୀର ଅପୂର୍ବ ସମ୍ଭାର। ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୟ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିହାତି। ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ବଜାର, SIRD କ୍ୟାମ୍ପସ, ୟୁନିଟ୍ 8, ଭୁବନେଶ୍ୱର।
2: एक
3: प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: देश हो रहा है आयुष्मान।
5: श्रोता बंधु कार्यक्रम शुणुंट 103.4 FM माध्यम आम परवर्ती कार्यक्रम प्रचार करुचु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र।
6: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया, गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
7: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की

0: कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
0: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहाँ लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
1: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
0: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
2: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
0: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही।
1: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
3: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपति

0: सांसदों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा तीन दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
1: इन ओवर थ्री डेकेड्स
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस 800 सेवा एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में दो स्कूली बच्चों सहित तीन लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का दो दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
2: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है।

0: वेस्ट इंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्ट इंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन की खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्ट इंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh. Flags off India's first hydrogen-powered train from Jind. Prime Minister says Centre is committed to ease of living and new opportunities for every citizen with the spirit of Nagrik Deva Bhava. Government convenes all-party meeting on Sunday ahead of monsoon session of Parliament. President Draupadi Murmu to embark on three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania from Sunday. Niti Aayog releases Investment Friendliness Index 2026. Gujarat emerges as the top performer, followed by Maharashtra and Tamil Nadu. Legendary West Indian cricketer Gary Sobers passes away. An Indian team announced for FIH Women's Hockey World Cup to be held in Belgium and Netherlands next month. Salima Tete named the captain. Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh today. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar this evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. Inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said, the NDA government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier and providing them with new opportunities for progress. He said it is the endeavour to ensure that every family, whether poor or middle class, receives the best possible facilities, and this spirit of Nagrik Deva Bhava is reflected in government's work.

का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो मिडिल क्लास हो ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले ये हमारा प्रयास है।

0: ଏ ଗୀତଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ସହିତ। ହ୍ୟାଲୋ ଆକାଶବାଣୀ ପୁରୀ
1: मानवर सर नमस्कार।
0: नमस्ते जी, आपका परिचय दीजिए।
1: मैं आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। महोदय आप कैसे हैं?
0: हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी हमारा यहाँ पुरी जगन्नाथ धाम पे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा की उत्सव मनाया जा रहा है, तो वहाँ पे मथुरा में कोई जगन्नाथ मंदिर हो या ऐसा कुछ है जहाँ पर कुछ ऐसे रथ यात्रा की कोई पावन अवसर हो रहा हो?
1: जी जी, सर्वप्रथम मैं आपको भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। ये पावन पर्व भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सभी के लिए कल्याणकारी और मंगलमय हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ आपको, आकाशवाणी पुरी को और समस्त श्रोताओं को।
0: धन्यवाद।
1: मान्यवर बताना चाहता हूँ कि हमारे मथुरा वृंदावन में भी एक वृंदावन में जो स्थान है वहाँ पर एक बहुत बड़ा भव्य जगन्नाथ भगवान का मंदिर बना हुआ है।
0: अच्छा।
1: और जैसा आपके जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है, उसी प्रकार हमारे वृंदावन में बहुत ही धूमधाम उत्साह पूर्वक और हर्षोल्लास के साथ में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है और उसमें लाखों लाख श्रद्धालु भक्त लोग शामिल होते हैं और बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है।
0: चलिए, तो ये जगत के नाथ हैं इसीलिए उनका नाम जगन्नाथ है, इसमें कोई जात पात ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, वो इसीलिए उतर आते हैं अपने मंदिर से, भक्तों के बीच में आ जाते हैं, तो इसीलिए ये इसका महत्व तो बहुत बढ़ जाता है क्योंकि वो ब्रह्म और परम ब्रह्म एक हो जाते हैं, एक दूसरे में लीन हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा सा एक मैसेज देता है कि आप अगर मिलजुल के रहे तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं है।
1: जी जी बिल्कुल, ये तो भगवान जगन्नाथ का संदेश ही है कि सब लोग मिलजुल के रहें और ऊंच नीच भेदभाव कोई यहाँ मायने नहीं रखता है। प्रभु को महाप्रभु है, महाजगन्नाथ है, महाप्रसाद है, वहाँ पर सब कुछ महा है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई कुछ छोटा है, है ना?
0: हाँ जी,
1: तो
0: हाँ
1: बहुत
0: जी।
1: ही भक्त लोग बहुत ही मान सम्मान आदर के साथ श्रद्धा के साथ भाव के साथ में भगवान जगन्नाथ को महाप्रभु को प्रसाद ग्रहण करते हैं, इस तरह से बहुत ही आनंद की अनुभूति करते हैं।
0: चलिए चलिए, तो महाप्रभु की करुणा सब पे बरसे यही कामना करते हैं ये विशेष दिवस में। तो इसी अवसर पे कौन सा आपका फरमाइश का गाना सुनना चाहेंगे बताइए।
1: इसी अवसर पर मैंने एक उड़ीसा आकाशवाणी से बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत सुना है, राजा इंद्रधनुष का सपना।

0: ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आकाशवाणी पूरी से हम समस्त ब्रज रेडियो श्रोता मित्रों के लिए प्रसारित करें।
1: चलिए चलिए, तो फोन करने के लिए मथुरा से बहुत बहुत धन्यवाद। तो जगन्नाथ जी की कृपा अब हम सब पे बरसे, तो रहते हैं। जय जगन्नाथ।
0: जय जगन्नाथ। बहुत बहुत हृदय से बधाई, शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करते हुए सादर नमस्कार।

0: कर रथ कोठे खींचते, आते वृंदावन प्रभु अश्रु नयन सींचते। गोप गोपी मिल कर रथ कोठे खींचते, आते वृंदावन प्रभु अश्रु।
1: श्रोताबंधु शुणुले कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी पुरी, प्रयोजना करते दिलीप कुमार नायक एवं उपस्थापन करते संतोष कुमार लेंका। आमर परवर्ती कार्यक्रम प्रचार करुछु आकाशवाणी कटक केन्द्र।
2: कटक केन्द्र प्रचार करुछु नाटक पुरुषोत्तम देव मूलमंच नाटक गोदावरी सुमिश्र बेता रूपांतर और परिचालना मनोरंजन दास।

0: ए दुर्ग मु प्रथमे अधिकार करिछि
1: मु प्रथमे अधिकार करिछि
0: मोर सैन्य माने प्रथमे एठार प्रवेश करिछि
1: ना मोर सैन्य माने प्रथमे प्रवेश करिछि
0: मु वर्तमान ए दुर्गर अधिकारी
1: ना अधिकारी मु
0: के परि
1: अधिकार थिबारु
0: कि अधिकार
1: राजार जे अधिकार राज्य रे थाय
0: के राजा
1: समग्र ओडिसा राजा मु केबे ए दुर्गर नुहे रामचंद्र
0: तुमे समग्र पृथ्वीर राजा होई पारो किंतु ए दुर्गर कदापि नुह विक्रमदेव
1: नुहे
0: ना ना नुह
1: तबे देखा जाओ कि ए दुर्गर राजा
0: किपरी हाँ हाँ किपरी देख देखा जीव कि ए दुर्गर राजा
1: जार शक्ति अधिक
0: कार शक्ति अधिक
1: मोर ना परीक्षा कर देखिबा कहार अधिक
0: परीक्षा
1: हाँ परीक्षा आत्मरक्षा कर बर्बर
0: आत्मरक्षा
1: हाँ आत्मरक्षा का पुरुष
2: महाराज सेनापति अर्जुन सिंह आक्रमण करियोछ
1: करू जा सैनिक आगे निष्पत्ति हेउ कि ए दुर्ग राजा नचे युद्ध रे की लाभ
0: ता सत्य विक्रम देव युद्ध रे की लाभ आगे निष्पत्ति हेउ कि ए दुर्ग राजा
1: से तो निष्पत्ति होईछि समग्र ओडिसा देश रे जे राजा ता निकट रे दुर्ग खंड रे प्रश्न पुणि काई कि
0: ए शरीर रे बिंदु ए रक्त थिबा जाय दुर्ग तुमर नुहे विक्रम देव
2: अर्जुन सिंह दुर्ग द्वार रे महाराज
1: जा सैनिक कथा कहो नहीं ए शरीर रे बिंदु रक्त थिबा जाए दुर्ग मोर रामचंद्र देव
0: अच्छा देखा जाऊ विक्रम देव
1: देखा जाऊ
0: किए हला दुर्ग राजा विक्रम देव
1: किए हला
0: एई तो अर्जुन सिंह अर्जुन सिंह तुम्हें जयलाभ करियो छ तुम्हर पुरुषोत्तमंकर प्रधान शत्रु एई विक्रम देव बड़ का पुरुष बड़ भीर बड़ दुर्बल बध करो नचे जाकु बंदी करिनियो
3: शत्रुर साहाज्य रे शत्रु को बध बा बंदी करबा खंडात जाने नाही रामचंद्र देव इच्छा हेले उभयंकु बध करंती बंदी करिनियंती किंतु युवक द्वय सम्राट कपिलेन्द्र देवंकर अन्न जल रे शरीर पुष्ट ए प्राण प्रतिपालित से इच्छा नाही ओडिशा गजपतिंकर बक्सी अन्यायरे कहार प्राण निए नाही प्राणदान करिबा खंडायतर धर्म जाओ युवक द्वय ए दुर्गरु सत्र निष्क्रांत हो वर्तमान ए दुर्ग महाराजांकर शत्रु एड़े क्षीण तरुण रवीर धीर विचरण रे हिमालय रु तुषार शिला विगलित हला परि विद्रोही वृंद क्षणक मध्यरे बल वीर्य हराई देइछंती भविष्यत उज्ज्वल मा उत्कल भूमिरा

0: महाराज, समय उपस्थित
1: ना, ये तो अन्ना।
0: अन्याय कौन महाराज?
1: अन्याय नुहे प्रहरी, घोर अन्याय।
0: अन्याय तो मोर महाराज कौन अच्छे
1: तुम्हर अन्याय रे मोर निष्कृति एक अन्ना पुणी आहुरी एक अन्ना मोर एपरी उपाय रे फलायन प्रहरी प्रहरी तुम्हरे दया निमंते मु कृतज्ञ मोर जीवन रक्षा पाई तुम्हें निजर जीवन देवा को प्रस्तुत अछ तुम्हर भय विक्रम मते बंदीशाला रे हत्या करिवे मोर अणुमात्र क्षोभ नाही प्रहरी मु प्रस्तुत अछि तुम्हे प्रहरी मरिबा को जान आउ जे मु विशाल ओडिसा राज्यर शासक पालक नियामक बोली आपणा को परिचित करिबा को उपयुक्त मणे सही मु मृत्यु केते भय करिवि ना ना ना प्रहरी ता हेबो नाही तुम्हर जीवन अमूल्य दुर्लभ तुम्हें बंची था मरिभार पात्र मु मरे तुम्हर दया निमंते मोर प्रतिदान देवार किछि नाही प्रहरी अछि केवल ए हृदय
0: महाराज
1: दुख नाही प्रहरी तुम्हें जाओ निज स्थान को फेरी जाओ
2: होशियार
3: महाराजंकर समस्त कुशल
1: अकुशल किछि नहि विक्रम देव
3: युद्ध शेष हेला
1: शेष हेला तेबे विक्रम
3: किपरि
1: जेपरि देखुछ विक्रम देव
3: देखुछि तुम्हे महाराजा पुरुषोत्तम देव किंतु दुख हेउछि बसिबार सिंहासन नहि पिंधिबार मुकुट नहि
1: सबु अछि विक्रम देव वर्तमान मु जेउ सिंहासन रे आसिन जेउ राजमुकुट रे मोर मस्तक मंडित ता अपहरण करिवार क्षमता तुम्भर नाही बलिकत्ता
3: ओडिसार महाराजा तो बेस कवि थिले बा न्यायक थिले ता नहले किए पड़ी किंतु पुरुषोत्तम आज किए ओडिसा राजा राजपुत्र विक्रमदेव ना राजद्रोही पुरुषोत्तम किए राजा
1: मृत्यु प्रति अत्याचार तत्पर पुणी बंदी प्रति तिरस्कार ए कलंक विक्रम तुम्भर नुहे ये मोर कलंक पुण्य जन्मभूमि रे कलंक अनंग नरसिंह कपिलेन्द्रंक उन्नत कीर्ति रे कलंक क्षत्रियर उदार उज्जवल धर्म रे कलंक
3: दुख लागुचि पुरुषोत्तम ना ना ना पुरुषोत्तम महाराजा
1: निश्चय पुरुषोत्तम महाराजा से आज बंदी बोली जे महाराजा नुहंति ताहा नुहे देख देख विक्रम तुम्हर बंधन छिन्न तलि पुरुषोत्तम विक्रम हस्तरे बंदी हेबार प्राणी नुहे
3: एई बर्बर को एई मुहूर्त रे हत्या कर सैनिक गण
4: हत्या कार हत्या विक्रम देव
3: हत्या वृद्ध अर्जुन सिंह तुम्हें एठारे के उद्देश्य
4: उद्देश्य विक्रम देव तुम्हें बंदी आउ बंदी नरसिंह देव गोपाल किशोर देव
3: बंदी
4: हाँ हाँ बंदी सैनिक गण एमन को घेरी जाओ
5: जय महाराज करो
1: सैनिक बर अर्जुन सिंह बड़ शुभ मुहूर्त रे साक्षात से विदाय बेलर कथा भालु थाए तुम्हें चली गल से मात्र देखा भाभी से आमर युद्ध शेष हला ओडिसार राज सिंहासन को कलंकित करी मु एठारे चीर विदाय नेबी किंतु ए जेपरी विधिर एक अद्भुत निर्देश भाग्यर एक विचित्र क्रीड़ा बड़ मधुर ए साक्षात पुनराय युद्धर संवाद कौन कही पार अर्जुन सिंह
4: संवाद समस्त मंगल महाराज युद्ध आज शेष वर्तमान तोफान स्थिर आकाश निर्मल सौभाग्यर भी पुनराय ओडिसार विशाल आकाश रे उज्जवल किरण बर्षण करिबो आउ चिंता नाही महाराज विजय धर्मर महत्तर उदार राजनीतिर
5: सन्नगण जय भेरी बजा
6: जय

0: युद्ध शेष विक्रम नरसिंह समस्ते आजि बंदी एबे मानंकु मुक्त करि देबा कण भलो नहे मंत्री
1: महाराजांकर जे इच्छा आ सेनापतिंकर जे अभिमत कौन सेनापति
0: साम्राज्य पक्षरे कौन सेनापति क्षतिर संभावना अछि
2: महाराजांक साम्राज्य रो क्षति करिवार आशंका कोनसी व्यक्ति थारो विशेष नाही महाराज किंतु कारारु मुक्त होले सेमाने विद्रोह घटाइबे एही मात्र संभावना
0: तेबे आजीवन कौन तेबे बंदी करी रखिबा सेमानंकु
1: राज्यर समृद्धि पई प्रजागणंकर सौभाग्य निमन्ते रखिबा अभिहित नुहे महाराज
0: आजीवन बंदी किंतु मंत्री एथिरे सेमानंक प्राणरे की घोर अशांति हेबो नायत सेमानंकर विशाल साम्राज्य मु बलपूर्वक अधिकार कली सेथिरे सेमाने वर्तमान सुद्धा नीरव सेमाने एबे आंभर बंदी
3: बंदी प्रति उपयुक्त व्यवहार हेउची बंधनरु मुक्त
0: कौन कहुच अर्जुन सिंह
4: निश्चय महाराज बंधनरु मुक्ति
2: मुक्ति महाराज
0: ए विजय तुम्भर सेनापति आउ तुम्भ वृद्ध बक्सी अर्जुन सिंहंकर विक्रम नरसिंह गोपाल किशोर देव समस्त आज तुम्भर बंदी आउ मंत्री ए विशाल राज्यर चालक आपण इच्छा हले अनुमति दियंतु सेमाने बंधनरु मुक्त हेबे
1: महाराजंकर आदेश ही आम्भ मानंकर इच्छा मुक्त हुंतु महाराज
0: हाँ सेमानंकु मुक्ति दियो सेमाने आजिरे मुक्त

0: नरसिंह ना पुरुषोत्तम किंतु उपाय नहीं। ओह की कष्ट की घोर दासत्व एजे से माने आसुचंती
1: बंदी ए माने अन्य समस्त केउ ठारे अर्जुन सिंह
2: से माने भीष्म कटक रे बंदी होइछंती 10 जण 3 जण कनकपल्ली रे दुछंती वर्तमान बंदी ए माने 16 जण मंत्री महाशय
1: तेबे वर्तमान निष्कंटक महाराज बहु दिन राजधानी रो अनुपस्थित हलेनी राज्यभार दीर्घकाल ए दुर्भर युग प्रहरी वर्तमान ए बंदी मानको कारावास को घेनी जाओ किंतु देखो कारावास रही जेपरि कौनसी असुविधा नुहे
3: आशा बंदी
1: अच्छा बक्सी एमाने कोन चिरकाल बंदी रहिबे
2: ए प्रश्न रो उत्तर बक्सी देन परे मंत्री महाशय सैनिक कार्य युद्ध रे शत्रु को पराजय करिबा शत्रु प्रति की व्यवहार करिबा को हबो से राजा और राजमंत्री कर विचार विषय
1: ई जे महाराज सेनापति
4: ए राज्यर गुरुभार आपण बहन
1: महाराजांकर अनुपस्थित रे जे कोनसि प्रकार कार्य चलाय देवा मात्र वर्तमान राज्य निष्कंटक
4: हाँ निष्कंटक मंत्री महाशय शत्रु माने समस्त पराजित किंतु ए विजय सेनापति और तांकर बक्सी वृद्ध अर्जुन सिंहंकर ए दुहिंकु देखिबा लागि बहु लोक प्रांगण रे अपेक्षा करि रहि अछन्ति आपण एमानंकु संगरे नै सेमानंकु देखाय आणंतु
1: आसो बसंत विराट अर्जुन सिंह ओडिशार सौभाग्य गगन रे सूर्यचंद्र दुई गोटी तुम्हे आसो
4: माँ उत्कल भूमि आज निष्कंटक शत्रु जे केवल पराजित ताहा नुहे एका बेलके निरस्त्र माँ उत्कल भूमि एते दिने निष्कंटक प्रतिज्ञा एते दिने पूर्ण होइअछि ए राजार नुहे पुत्रर कर्तव्य जन्मभूमि जननीर समान जन्मभूमि जेतेबेले विपन्न प्रत्येक संतानर कर्तव्य से विपद दूर करिबा आउ मु मातृभूमि को रक्षा करिअछि प्रभु तुमर ए विशाल करुणा जीवन रे बहुबार तुम्हर अपार कृपा वर्षण करिअछ आपदरे विपदरे उद्धार करिअछ भगवान सेदिन श्रीक्षेत्र रे असीम आर्णवर जलतरंग मध्यरे बुड़ी जाउथिली कहार करुणामय करजुगल जेपरि मते उपरकु टेकि आणिला कृष्ण नदी कूळरे युद्धभूमि रे जीवनर अंतिम निश्वास धारा विसर्जन करुथिली कि आसी नूतन प्राण ढाली देगला अपार करुणा प्रभु अपार करुणा तुमर इच्छा पूर्ण हो
5: दूत ए बांछा पूर्ण होई पारिबो नाही एते आस्पर्धा उत्कल दूत
6: आस्पर्धा काई महाराज
5: आस्पर्धा जे कांची राज जमारो प्रत्याशी होई अछि
6: ए कोन आस्पर्धा रा
5: पूर्ण आस्पर्धा ए बामनर चंद्र को हाथ बढ़ाइबा परी सामान्य पिंपुड़ी होई दीपरुखारे चढ़ीबा समान आस्पर्धा नुहे दूत मूर्खता मात्र
6: गजपतिंकर एपरि निंदा करिवे नहीं महाराज
5: दूत निंदा किछि नहि सत्य निराड सत्य ता हेब नहि दूत से कुलांगर हातरे मु मोर कांची राज्यर कांचन जेमा पद्मावती की देवी नहीं
6: भलो कथा मु दूत एहि सोमवार जाय गजपतिंकर श्री झामरे जणाइबी दुर्नाम सुनिबा दूतर कर्तव्य नहीं महाराज
5: दूतर तो बेस कर्तव्य ज्ञान अच्छी जाओ जाओ दूत तोर राजा को कहिबु मोर पद्मावती की बर न मिलिले चिर कुमारी करी रखिबी बरंच चांडाल संगरे विवाह कराइबी से भातृहंता क्षेत्रिय बैरी चंडाल व्यवसायी बर्बर तार स्पर्धा देखि मु वर्तमान विस्मित कांची राजा कपिलेन्द्र देवंक पुत्र नुहन्ति दूत जे पुरुषोत्तम द्वारे जाई भिक्षार्थी हेबे जाओ शक्ति अछि पराक्रम अछि कहिबु एते जदि लालसा पद्मावती को विवाह बार जेबे एते प्रबल अभिलाष कहिबु युद्ध रे जय करी पद्मावती रु घेनि जाऊ पद्मावती मोर शाक तंडुल नुहे जे जेउ पथर भिक्षुक आसी भिक्षा करिबो ता हस्तरे अर्पण करिबि जाओ दूत तो राजा को जाई जणाओ
6: जणाइबी महाराज प्रभुर निंदा शुणी ओडिया नीरवरे फेरे नाही तार प्रतिरक्त बिंदु प्रभुंक पदरे उच्छृष्ट मु दूत दूतर कर्म संवाद बहन करिबा ए अस्त्र धारण नुहे अस्त्र धारण भाण मात्र नोहिले ए जीवन नै फेरन्ति नाही महाराज दूत कर्तव्य त्रुटि घटिब ए अस्त्र एहिठारे विसर्जन करिगलि जदि ओडियार बाहुरे शक्ति थाए तेबे आसी एठारु स्वदेश को पुनः आनेबा
5: दूत सामान्य दूत होई तोर मध्ये एते आस्पर्धा

0: महाराज
1: दूतक दूतक यही मुहूर्त बंदी कर प्रहरी रेडी आस्पद
2: आपत्ति ना महाराज प्रभुर अपमान सही न पारिबा अपराध रे हतवा बंदी हेबा ओडियार भूषण किछि आपत्ति नाही प्रहरी चल
3: महाराज क्षमा करिबे दूत प्रति व्यवहार उचित होई नै
1: उचित होई नै प्राणदंड प्राणदंड उचित होई नै दूतर इते साहस राजप्रासाद मध्ये राजांकर अपमान करिबो
3: तथापि से दूत महाराज
1: हेला ता मु जाने
3: महाराज संभवत यहार परिणाम भल हेब नाही
1: परिणाम परिणाम निमन्ते मोर भ्रुक्षेप नाय महामंत्री
3: राणी युवराज प्रभृतिक ए विवाह सम्मति थिला महाराज करिथिले होइथांत
1: चुप हो महामंत्री से विचार तुम हस्तरे नाही कि राणी आउ युवराज हस्तरे नाही
3: किंतु दूत प्रति व्यवहार असुंदर दिसिबो
1: असुंदर किछ नहे जा होइछि ठीक होइछि
3: निंदा हेबो महाराज
1: निंदा ठीक होइछि मंत्री ठीक होइछि निंदा काहे कि
3: तथापि महाराज अनिष्ट र आशंका पूर्ण विपद घटि पारे
1: तेबे कोन सामान्य दूतताए एते अपमान दे चली जबो
3: सामान्य दूतटा एबा बंदी कर कि लाभ
1: लाभ लाभ अपमान र प्रतिहिंसा तेबे हुए तो विपद घटि पारे
3: प्रतिहिंसा महाराज सामान्य दूत ठारे राजोचित नुहे
1: राजोचित नुहे
3: नुहे महाराज
1: नुहे ए कथा तुमे कहुचो महामंत्री नुहे अच्छा देखिबो देखिबो युद्ध क्षेत्र रे हार प्रमाण हेबो

0: ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିକନ୍ଦର ଆଲାମଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଏକ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ। ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें एसएएस नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
2: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक तीन देशों मोल्दोवा,

उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।